उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।

फिर जब आसमान फट कर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

0: I love FM 101. 101.
1: More music coming your way.

0: I love FM 101.
1: More music coming your way.

0: I love FM 101. 101.
1: More music coming your way.

0: I love FM 101.
1: More music coming your way.
2: Coke Studios Season 10.

0: I love FM 101.
1: More music coming your way.

ਚਾਰ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਇਆ।

तौहीद का नारा है, उम्मीद का परचम है। तौहीद का नारा है, उम्मीद का परचम है। अपनी मेरी धरती है, अपना मेरा मौसम है। इस खाक पे मैं कुर्बान, इसकी ही दीवानी। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ।

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

jazz music, and then their magic. One Above FM 101.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

dance music, and then dance magic. One Above, FM 101.

0: आई जय तो आई आए चमकीली बारात लेके आप आइए सारे शहर जय तो आई जय तो
1: दिस इज 101% प्योर यू आर ट्यून्ड इनटू द वन अबव 101

हैं उस दिन जहांगीर, और आप सबको पता है कि जश्न आजादी हम भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी आन है, पाकिस्तान है तो हमारी शान है, पाकिस्तान

अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मीर हामिद अली। पूरी कौम को 14 अगस्त की आज़ादी का दिन मुबारक हो। आपका हम भजन अपने तमाम कौम को अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे और उसके दिन दोगुनी या चौगुनी तरक्की पर फरमाए। आमीन। तो मानो साया।

jazz music, and then there's magic. One Above FM 101.

तन्हाइयों में जाने दे, अब मुझ पे जो गुजर रही तुम्हें तो कोई खबर नहीं। तेरे तरीके ही करें बेनकाब तुझे, दिले बेताब करे बेजार मुझे, दिल बंजर कोई जिंदा शजर नहीं। चंद यार ही अब दिखे मेरे साथ मुझे, पढ़े जहन मेरा समझ के किताब मुझे।

0: दिन के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। सवात के इलाके कबल में पुलिस स्टेशन के बाहर होने वाले खुदकुश धमाके में 7 अफराद शहीद हो गए हैं। आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के इंतखाबात के दूसरे मरहले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 14 नशिस्त से जीतकर वाहिद अक्सरियती सियासी जमात बन के उभरी है। ईरान और अमरीका के दरमियान मुजाकरात आज होंगे। और पोर्ट ऑफ स्पेन ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे रोज वेस्टइंडीज अपनी पहली इनिंग्स कल के स्कोर 239 रन 5 खिलाड़ी आउट पर आज फिर शुरू करेगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

मैं संगीता आप सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त की आज़ादी आप सबको मुबारक हो। ये वो दिन है जहाँ हम आज़ाद हुए थे और आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। ये कदर तो उन लोगों को मालूम होती है जो बाहर बैठे हुए हैं।

जहांगीर, और आप सबको पता है कि जश्न आजादी हम भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी आन है, पाकिस्तान है तो हमारी शान है, पाकिस्तान

0: करना है, देन हम लोग इस ट्रैक पर चल सकेंगे. अदरवाइज मुश्किल ही है, हम खुद को फोर्स नहीं कर सकते.
1: बिल्कुल ऐसे. और जब तक आप देखें कोई भी बंदा किसी भी उस फील्ड में डिलीवर, दिस इज एफएम 101.

सुन रहे हैं FM 101।

दिल मुब्तला है कब से अजाबे सुकूत में, तू रब्बे नुतको लब है मुझे बोलना सिखा। अस्सलामुअलैकुम एंड अस्सलामुअलैकुम लाहौर। वेलकम, खुशामदीद आप सभी सुनने वालों को एक बार फिर से FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर में। प्रोग्राम सुनेंगे अब आप लेडीज लाउंज, मुझे कहते हैं आरजे सातिया रफीक। जी हाँ जनाब, दिस इज गोना बी अ वेरी बिग सरप्राइज फॉर मैनी ऑफ यू, क्योंकि आफ्टर लॉन्ग बहुत ही अरसे के बाद आज एक बार फिर से हो रही है मेरी आपसे मुलाकात। हवाओं के दोष पर FM 101 से। तो जनाब आगाज करते हैं, सबसे पहले बढ़ते हैं आज के वेदर अपडेट की जानिब। वेल जनाब, एज पर वेदर रिपोर्ट इट्स 35 डिग्री सेल्सियस ऑन द स्केल राइट नाउ एंड दिस इज द हाईएस्ट टेम्परेचर फॉर टुडे, यानी आज के दिन 35 डिग्रीज ही हाईएस्ट रहने वाला है, जबकि मिनिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। और जनाब ह्यूमिडिटी की बात करें, दैट इज 68%। हवा चल रही है 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। और जनाब पाकिस्तान के मौसम की ओवरऑल बात करें तो मौसम है आज़ादी का, जिसके रंग फिजा में हर तरफ बिखर रहे हैं और हमें दिख भी रहे हैं। मेरा आपका हम सब का प्यारा पाकिस्तान, इंडिपेंडेंस डे इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर और हम सभी बहुत एक्साइटेड भी हैं। लेकिन जनाब इंडिपेंडेंस डे से पहले भी एक और अहम मौका है, एंड दैट इज 5 अगस्त। 5 अगस्त जिसको के हम यौम इस्तेहसाल कश्मीर के नाम से जो है वो जानते हैं। पिछले कुछ सालों से बाकायदगी से हम लोग इस दिन को ऑब्ज़र्व करते हैं और याद करते हैं उन कश्मीरी बहन भाइयों को कि जिनके हक के खुद अरादियत की बात होती थी कभी, लेकिन अब तो उनके बुनियादी इंसानी हकूक की बात होती है। और दुनिया के हर प्लेटफॉर्म से रेडियो पाकिस्तान के साथ साथ हम बहस्तित पाकिस्तानी अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करते हैं और करते रहेंगे कि बुनियादी इंसानी हकूक में जो चीज़ें हैं वो कश्मीरियों का हक हैं, हमारे कश्मीरी बहन भाइयों का हक है और वो उनको मिलनी चाहिए। और हमारे हमसाया मुल्क की जो ये हट धर्मी है, जिस तरह से वो इनके बुनियादी हकूक को सल्ब करके बैठा है, उसके ख़िलाफ़ हम मजम्मत पुरजोर मजम्मत भी करते रहेंगे और अपनी आवाज़ भी उठाते रहेंगे। सो आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि जो जो जहाँ जहाँ जिस मकाम पर जिस प्लेटफॉर्म पर जिसको मौका मिले वो ज़रूर जो है इस हवाले से बात करे और अपना पैगाम जो है वो पहुँचाए। और जनाब जैसा कि इंडिपेंडेंस डे की हम बात कर रहे हैं और आप लोग भी इस हवाले से बात कर सकते हैं, हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं ये हम आपके साथ शेयर करते हैं अभी कुछ ही देर में। इट्स 11:14 ऑन द डायल राइट नाउ। लेडीज लाउंज आप सुन रहे हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर से।

All right, listeners, we're back again. वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं. So, आप भी हमें बताइए कि ये जश्न आजादी आप लोग किस तरह मना रहे हैं. डबल 471 इज द नंबर जहां पे आप अपने टेक्स्ट मैसेजेस हमें भेज सकते हैं. अपने फोन के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LHR, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पैगाम लिखिए और जनाब रवाना कर दीजिए 4471 पर. आप लोगों के मैसेजेस हम तक पहुंचेंगे और हिस्सा बनेंगे हमारी आज के इस शो का. कॉल्स करने के लिए डायल कर सकते हैं 042-111-000-101. हमारा यूनिवर्सल एक्सेस नंबर आपके लिए अवेलेबल है और बात करेंगे आज हम हल्की फुल्की चिट चैट. चाय चल रही होती है जनाब हर जगह, हर वक्त, घर में, दफ्तर में, आप जहां बैठे हों, आपका एक ही आपके लिए शगल होता है किसी भी वक्त मिल जाए, बस चाय हो. सो जनाब, हमने सोचा कि आज हम आप लोगों से पूछते हैं, आप लोगों से जानते हैं कि आखिर कितनी चाय आप लोग एक दिन में कंज्यूम करते हैं. बहुत सारे लोग हैं जो बगैर गिने कप पी रहे होते हैं और कुछ लोगों की फिक्स्ड रूटीन होती है कि जनाब ये टाइम है, ये औकात है जिसमें हम चाय पियेंगे और उसके अलावा चाय नहीं पीते. सो बहुत सारे टाइप्स के लोग हैं. आज हम आपसे जानना चाहेंगे, हमें बताइए कि आप एक दिन में कितने कप चाय पीते हैं और चाय पीने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या रिसर्चेस हैं, क्या फ़न फैक्ट्स हैं. ये सारी बातें हम आपसे करेंगे और थोड़ी सी अवेयरनेस देने की भी कोशिश करेंगे. सो आई होप सो आप लोगों को मेरा BGM अच्छा लगा होगा. इसी उम्मीद के साथ जनाब हमने ये चूज़ किया है. बाकी आप लोग अपनी आरा से हमें आगाह कर सकते हैं. राइट नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग. सो जनाब, ये सॉन्ग शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में और इसके बाद लौट कर आते हैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से. FM 101 Radio Pakistan, Ladies Lounge.

Alright, listeners, we're back again. Ladies Lounge में बात कर रहे हैं आज हम चाय की. A majority of people आप कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं चाय के. बहुत कम लोग जिंदगी में ऐसे मिलते हैं जो आपसे ये कहें कि जनाब हमें चाय बिल्कुल पसंद नहीं है. और चाय के हवाले से बात करें तो एक और बहुत खूबसूरत बात जो चाय के साथ जुड़ी हुई है वो होती है बैठक की. कि चाय जब भी आप पीते हैं तो आप एक महफिल में लोगों के साथ बैठ के, कलीग्स के साथ या बहन भाइयों के साथ, फैमिली के साथ आप बैठ के पीते हैं तो फिर बहुत सारी बातें भी होती हैं, इधर उधर की डिस्कशंस होती हैं, गॉसिप्स होते हैं. तो मुझे सबसे खूबसूरत बात अगर ज़ाती तौर पर मैं कहूँ तो यही अच्छी लगती है चाय की, कि चाय एक महफिल सजा देती है. सो जनाब, आप हमें बता रहे हैं आज कि आप कितने कप जनाब आप हमें बता रहे हैं आज कि आप

All right, listeners, we're back again. It's 11:35 on the dial right now. You're listening to Ladies Lounge. Arjun, ab hamare wo log, wo dost jo safar mein hai, raste mein hai, move kar rahe hain, aap kahin aa rahe hain, kahin ja rahe hain, hame sun rahe hain, aapse kahenge, have safe drive, have safe way. जहाँ भी जिस भी शाहराह पर हैं, जिस भी चौक पे मौजूद हैं, बहुत ध्यान से, बहुत एहतियात के साथ दाएं बाएं आगे पीछे जहाँ तक आपकी नज़र जाए, नज़र दौड़ाइए और इस बात का इत्मीनान कर लीजिए कि आप ठीक जा रहे हैं और आपके आसपास के लोग भी ठीक जा रहे हैं। और हमेशा याद रखिए, ट्रैफिक रूल्स हमारी अपनी सेफ्टी के लिए होते हैं। और हम सबको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि हमारी रोड सेफ हो सके हम सब के लिए। एम रजा चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे ऑफर और बहुत ज़्यादा वेलकम कहा, थैंक यू का, आप की दुआओं का बेहद शुक्रिया आपने हमारे साथ जो शेयर की। और जनाब उनका हमारे आज के टॉपिक के हवाले से कहना है कि मैं एक दिन में 4 से 5 कप चाय ज़रूर पीता हूँ और फर्क नहीं पड़ता मौसम कौन सा है, सर्दी है या गर्मी है, चाय तो फिर चाय है। सो उन्होंने कहा कि जून की तपती दोपहरों में भी और बरसात के शदीद हब्स में भी हम लोग तो जनाब चाय पीते हैं और पीते रहेंगे। आप लोग कितने कप चाय पीते हैं जनाब एक दिन में, आप हमें बता रहे हैं। 4471 पे आप लोग अपने मैसेजेस हमें भेज सकते हैं अपने फ़ोन के राइट मैसेज ऑप्शन में, चाहिए टाइप कीजिए 10LHR स्पेस दें, अपना नाम लिखे, अपना पैगाम लिखे और भेजे उसको 4471 पर।

0: सो जनाब, कैफीन की बात कर रहे हैं हम बेसिकली, जो कि एक ऐसा केमिकल है जो चाय में मौजूद है और जो हमें बेदार रखता है, एक्टिव रखता है। बहुत सारे लोग एक्टिव होने के लिए चाय पीते हैं और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि हम अगर रात में चाय पिएं तो हम सो नहीं पाते हैं। सो ये प्रॉब्ली इसलिए होता है कि चाय आपको एक्टिव रखती है। लेकिन जनाब, आई हैव सीन सो मैनी पीपल ऐसे भी कि जो चाय पी कर भी बड़े मज़े से सोते हैं, बल्कि वो जब तक चाय ना पिए वो सो नहीं पाते, क्योंकि एक रूटीन होती है, एक आदत होती है। आप कौन से लोग हैं मुझे बताइए, बताते रहिए। बहुत सारा वक्त हमारे पास पड़ा है आज के शो के लिए और हम मौजूद हैं आपकी बातें सुनने को। कीप शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस और हम भी अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे। राइट नाउ जनाब, नेक्स्ट ट्रैक आई एम गोना प्ले, और दिस टाइम आई एम गोना प्ले पार चना दे।
1: पार चना दे,
0: आप लोग भी अपनी रिक्वेस्ट, अपनी फरमाइश, अपनी ख्वाहिश हम तक पहुंचा सकते हैं।

जी सुजना, वेलकम बैक वंस अगेन. और हमारे फोन की लाइन ब्लिंक कर रही है, कर रही है, कर रही है, करती जा रही है. एंड आई वुड से थैंक यू सो मच आप लोगों का, आपकी एफर्ट्स का, हमारा साथ देने का. सो जनाब, फिर हुई बात हमारी ढेर सारे लिसनर्स के साथ. सो जनाब, बोधी जट साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना है कि वो सुबह शाम एक एक कप चाय पीते हैं. हनीफ ड्राइवर साहब से हमारी बात हुई और उनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं. जनाब ने ढेरों ढेर वेलकम कहा, हमें खुश आमदीद कहा, मुबारकबादें पेश की. और उनका कहना है कि जनाब हम हैं ड्राइवर, और ड्राइवर तो जनाब ब्रेक ही वहाँ लगाते हैं जहाँ चाय दिख जाए. तो ऐसा ही है, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं कि जहाँ पे चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. सो आई गेस टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो ड्राइवर्स नज़र आती हैं. लेकिन हनीफ साहब कह रहे थे कि जनाब अब मैंने कंट्रोल करने की कोशिश की है और मेरी कोशिश होती है कि मैं सुबह और शाम बस दो औकात में दो वक्त जो है वो पीऊँ, ज़्यादा इंटेक ना करूँ. मोहम्मद सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहने कि वो एक बार दिन में पीते हैं चाय. और वो सभी लिसनर्स को, हमारे सीनियर लिसनर्स को, रेगुलर लिसनर्स को जो है वो सलाम कह रहे थे. इसके अलावा जनाब मोहम्मद तारिक साहब शामिल हुए हमारे शो में, बहुत शुक्रिया आप सबका. और मुझे वापस आने से ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि मेरे सारे लिसनर्स वहीं के वहीं मौजूद हैं, न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिला रहे हैं. सो आई एम जस्ट ओवर द मून. और तारिक साहब कह रहे थे कि दो ही कमज़ोरियाँ हैं, लहजे नरम और चाय गरम. सो दिन में कहते हैं कि मैं 5 से 6 कप चाय आराम से पी लेता हूँ. अर्ली मॉर्निंग में कोशिश होती ब्लैक टी पीऊँ और फिर बाकी दिन चलती है चाय दूध वाली. और जनाब इससे कि मुझे याद आया कि दूध वाली चाय जो है ये भी एक तकल्लुफ है हमारा सब कॉन्टिनेंट का. सब कॉन्टिनेंट से बाहर निकले आपको कहीं भी दूध वाली चाय नहीं मिलेगी. आपको ब्लैक टी मिलेगी, आइस टी मिलेगी, डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ टी मिलेगी, लेकिन दूध नहीं मिलेगा. सो ये जो दूध वाली अयाशी है ना, मैं कहूँगी कि ये सिर्फ हम लोगों के पास है. एंड वी सीरियसली एंजॉय दिस. जैसे भी बोधी जट साहब कह रहे थे कि हम चाय बनाते हैं खालिस दूध की और चीनी नहीं डालते जनाब, गुड़ डालते हैं. सो ये भी है कि जनाब फ्लेवर्स हैं सबके अपने अपने. कोई फीकी चाय पीता है, कोई चीनी के साथ पीता है, कोई गुड़ के साथ पीता है, कोई शक्कर के साथ पीता है. और एक और बहुत मज़े की बात याद आई कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा चीनी के साथ चाय पीते हैं और उनकी फिलॉसफी ये है ज़्यादा चीनी के साथ चाय पीने की कि जनाब हम सारे दिन में मीठा खाते नहीं हैं उस तरह से. सो जो हमारे मीठे की इनटेक है वो हम चीनी के डाल के चाय में जो है वो पूरी करते हैं. एनी हाउ जनाब, डिबेट है और बहुत ही बड़ी फैली हुई डिबेट है. चाय को ऐसे ही तो नहीं जनाब लोग सैयदुल मशरूबात कहते. कौन सी चाय हो, कैसी चाय हो, कहां पे हो, किसके साथ हो. और जनाब एक फन फैक्ट आपको बताते चले कि चाय की अगर बात करें तो दुनिया में पानी के बाद जो चीज सबसे ज्यादा पी जाती है वो है चाय. और आज हमने इतनी ब्रांडिंग कर देनी है चाय की, मुझे लगता है कि जो लोग नहीं पीते उन्होंने भी पीनी शुरू कर देनी है. FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर से आप सुन रहे हैं लेडीज लाउंज, मुझे कहते हैं सादिया रफीक. और जनाब आपको क्या कहते हैं आप हमें बता रहे हैं 04211000101 पे. आप लोगों के टेक्स्ट मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं 4471 पर. फोन के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, LHR लिखिए, स्पेस दीजिए, नाम लिखिए, अपना पैगाम लिखिए और भेजिए 4471 पर.

अच्छा जनाब, अभी बात हो रही थी सिद्दीक साहब से, तो उनका ये कहना था कि जो हम मर्द हजरात हैं ना, हम चाय कम पीते हैं, ख्वातीन ज़्यादा चाय पीती हैं। मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि आई गेस इक्वली ही पीते हैं, और ख्वातीन अगर ज़्यादा पीती हैं तो वो भी इसलिए शायद ज़्यादा पीती हैं क्योंकि वो बना बना के दे रही होती हैं। आप लोगों को क्या लगता है जनाब, कौन ज़्यादा चाय पीता है? बिकॉज आई हैव सीन सो मैनी पीपल ऑफिसेज में जो ऑफिसेज से लंच ब्रेक के बाद स्पेशली चाय पीने के लिए निकलते हैं। जैसे अभी हम ड्राइवर हजरात की बात कर रहे थे, तो हनीफ साहब कह रहे थे कि हम ड्राइवर लोग जो हैं वो तो ब्रेक ही वहाँ लगाते हैं जहाँ चाय दिख जाए। मतलब एक अच्छा सा ढाबा होटल ढूंढ के वो ब्रेक लगाते हैं कि यार यहाँ बैठेंगे, यहाँ रेस्ट करेंगे। तो इसी तरह ऑफिसेज के अंदर भी चाय बहुत पी जाती है। मैं अग्री तो नहीं करती हूँ सिद्दीक साहब से, आप लोग करते हैं या नहीं आप लोग मुझे बता सकते हैं। लेकिन ख्वातीन घरों में, आप ये कह लें कि वो क्योंकि किचन में बना रही होती हैं, बार बार बना रही होती हैं लोगों के लिए, हो सकता है ज़्यादा पीती हूँ।

सो इट्स अ चाइनीज इन्वेंशन बेसिकली, और कैसे इन्वेंट हुई इस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन करेंगे न्यूज ब्रेक के बाद. इट्स 11:56 ऑन द डायल राइट नाउ. एक ट्रैक हम शामिल करते हैं, एक सॉन्ग सुनवाते हैं आपको, और उसके बाद हम लौट कर आते हैं ब्रेक के बाद. स्टिक अराउंड, दिस इज एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान. आप सुन रहे हैं लेडीज लाउंज साथिया रफीक के साथ.

तो लोग उसको लॉक में रखते थे अपने सोने जवाहरात की तरह। जो कि आज इतनी आम है कि हर खास व आम के हाथ में है और हम उसको एंजॉय करते हैं, अपनी जिंदगी के खूबसूरत लम्हे, खूबसूरत यादें बनाते हैं चाय के साथ। आप भी चाय पीजिए और यादें बनाइए हमारे साथ साथ, और करते हैं हम कुछ बातें अपनों के साथ, अपने दिल की। इसी चाय के कप पर

All right, listeners, we're back again. चाय के हवाले से बात हो रही है. अभी ऑफर हमारे साथ कुछ कॉलर्स मौजूद थे और वो अपनी अपनी आरा का इजहार कर रहे थे. शाहिद नदीम साहब शामिल हुए शो में ऑल द वे फ्रॉम सऊदी अरेबिया में, सुन रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया. और उनका मानना है कि चाय बहुत इम्पोर्टेंट है, पीनी चाहिए, लेकिन जाती तौर पर वो अवॉइड करते हैं. सो जनाब, ऐसे ही लोगों का इंतजार था मुझे कि कोई तो आएगा, कोई तो कहेगा कि नहीं, हम नहीं पीते. एनी हो जनाब, खान बाबा हमारे साथ मौजूद थे डिफेंस से और उनका ये कहना है, हम भी चाय पीते हैं और अपने हाथ से बनाकर पीते हैं. वो किसी के हाथ की चाय उनको नहीं पसंद. और उनका ये कहना है कि उनका जो चाय का कप है वो इतना बड़ा है कि उसमें चार कप चाय आराम से समा जाती है. सो वो एक कप चाय एक सुबह को, एक कप चाय शाम को पीते हैं, तो आप कह सकते हैं कि मैं 8 कप चाय पीता हूँ. ऑलराइट. देर आर पीपल, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बगैर गिने भी पीते हैं, जहाँ बैठ जाएं वहीं पीते हैं, जो पूछ ले उसी से कह देते हैं कि हाँ हाँ बना लो. जैसे अभी वो बात हो रही थी कि ख्वातीन ज्यादा चाय पीती हैं. यस, आई एग्री, क्योंकि ख्वातीन घरों में होती हैं और वो घरों में अपने लिए कह लें कि एक मी टाइम निकालती हैं जब बैठती हैं तसल्ली से, तो फिर गॉसिप्स भी होते हैं और चाय भी होती है. जैसे चाय एक ख़ास होती है, हर हाथ का अपना एक जायका होता है, ऐसे ही जो संगत होती है, जो चाय पीने के लिए आपके आसपास लोग होते हैं, वो भी आपने बड़े सोच समझ के चूज़ किए होते हैं किसके साथ चाय पीनी है. तो जो टी पार्टनर्स होते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं. एनी हाउ जनाब, एक और ट्रैक प्ले करने जा रही हूँ मैं आप लोगों के लिए, और ये ट्रैक सुनते हैं, इसके बाद आप लोगों को वापस ज्वाइन करते हैं. आप हमारे साथ साथ रहिए, डायल करते रहिए 04221100101, और जनाब इसके अलावा 4471 इज देयर. और कुछ लोग क्वेरीज आ रही है मेरे पास फेसबुक पोस्ट के हवाले से, तो जनाब इंशाल्लाह नेक्स्ट शो से आप लोगों को स्टेटस अपडेट मिल जाएगा हमारे फेसबुक पेज पर भी.

सुन रहे हैं।

Alright, listeners, welcome back once again. आप सुन रहे हैं FM 101 Radio Pakistan. और जनाब मुझे कहते हैं सादिया रफीक, आपको क्या कहते हैं? आप भी हमें बता सकते हैं, हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं अपने मैसेजेस के थ्रू, अपनी कॉल्स के थ्रू. डायल कीजिए 042-111-0101 और यू कैन सेंड योर मैसेजेस ऑन 4471. अपने फ़ोन के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LHR स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपना पैगाम लिखिए और भेजिए 4471 पर.

सो जनाब फन फैक्ट्स आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं चाय के हवाले से। आपसे हमने पूछा कि आप एक दिन में चाय के कितने कप कंज्यूम करते हैं, कितनी चाय पीते हैं, आप हमें बता रहे हैं। सो कीप ऑन टेलिंग अस। Right now we're heading towards another song. Is song ke baad laut kar aate hain. Stick around, this is FM 101 Radio Pakistan.

sorry, Janab. It happens. And I know बहुत बुरा लगता है जब आप बार बार try कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो और उसके बावजूद बात ना हो पाए.

जनाब आई गेस देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम, इसको हम देखते हैं और फिर दोबारा से आपकी कॉल्स लेने की कोशिश करते हैं. अप टिल देन आप रहिए हमारे साथ साथ. 04211100101 इज द नंबर जो आप डायल कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं हमारे आज के शो में और अपनी आरा का इजहार कर सकते हैं.

Apart from that, 4471 is always there for you guys, where you can send your text messages. अपने फोन के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए 101L, स्पेस दीजिए, नाम लिखिए, अपना पैगाम लिखिए और भेजिए उसको 4471 पर. और जनाब, आप लोगों के जो मैसेजेस हैं वो हम शामिल करेंगे शो में.

नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करते हैं और जनाब उसके बाद आप लोगों से हम आवाज़ होते हैं एक बार फिर से। डॉक्टर फकीर हमारे साथ शामिल हुए ऑल द वे फ्रॉम मरी, हमें सुन रहे हैं। नाहिद अख्तर के गाने की फरमाइश की है जी जनाब, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी फरमाइश भी शामिल हो सके।

0: Alright listeners, एक कॉलर हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम.
1: अस्सलाम वालेकुम आतिफ.
0: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन हमारे साथ?
1: जी आतिफ, मैं अब्दुल हमीद फरुखाबाद से बर्फी वाला बात कर रहा हूँ. सारे दसन वाला भी मैं आपकी शादी आई है तो मेरी कार ही नहीं मिली. दिल कर बड़ा खुश होया, तुसी काफी देर बाद आए, अभी तुहाडे पुराने सुनन वाले हैं.
0: ऐसा ही है, ऐसा ही है.
1: दो वारी मेरी आनर कॉल मिली है, गल नहीं हुई. कोई मसला इधर मसला है.
0: हाँ जी, कुछ मसला था, ठीक हो गया. लेकिन अब आप बताइए, क्या कहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से, क्या कहेंगे?
1: हाँ टॉपिक अच्छा है. मैं तो पांच कप पीते
0: माशाल्लाह.
1: अब्दुल हमीद फरुखाबाद से बर्फी वाला, मेरा नाम ही तवन वन पे बर्फी वाला मशहूर हूँ.
0: अच्छा, क्या कहने आपके?
1: हाँ, क्योंकि असन राजा सलीम दर्जी शहजाद अली लाडला असन खान
0: जनाब, पांच कप चाय. आप कितने कप चाय पीते हैं जनाब, आप भी हमें बता सकते हैं.

जी जनाब, इट्स 12:43 ऑन द डायल राइट नाउ. बहुत कम वक्त हमारे पास बचा है जनाब आज के शो के लिए. हम बात कर रहे हैं चाय की. आप भी कीजिए जल्दी जल्दी अपनी बात. 04-2111-0101 इज द नंबर. आप लोगों की लाइव कॉल्स हम शामिल कर रहे हैं शो में. अस्सलाम वालेकुम.

0: Alright, listeners, एक कॉलर जो है उनको शामिल कर लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम. आपको और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम. मैं मोहम्मद सलमान भट्ट सन्नाबाद लाहौर से बोल रहा हूँ.
0: जी सलमान साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं
1: जी, अल्लाह का शुक्र. बेटा आपका प्रोग्राम अच्छा है, मैंने सुना है. और आपने चाय का पूछा है, चाय का. पहले तो मैं बहुत कम पीता था, रिटायर होने के बाद आपकी आंटी को बड़ा शौक था. वो तकरीबन 15-20 कप चाय के और दर्दा और हलवे बड़े खाती थी. अब तो वो मुझे रिटायरमेंट के बाद उन्होंने भी आदत डाल दी है.
0: अच्छा जी.
1: अब उनकी छोड़ दी है, डॉक्टर ने उन्हें मना कर दिया और मुझे लग गई है.
0: ठीक हो गया तो वो बना देती है आपको. Alright, call drop हो गई थी, मज़े की बात हो रही थी. So it happens ना, it happens with people कि कुछ लोग addicted होते हैं, फिर वो अपने साथ और लोगों को शामिल कर लेते हैं, उनको भी आदत डाल देते हैं. ये कुछ ऐसी आदतें हैं हमारी ज़िंदगी में. So अल्लाह ताला से दे जनाब आपकी मिसेस को. और ये तो थोड़ी सी परेशान कुन बात है ना, डॉक्टर मना कर दे. Anyhow, सेहत के मामलात भी जिंदगी के साथ साथ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम.
1: जी मैं मोहम्मद सलमान बट बोल रहा हूँ. वो कॉल मेरी मिस कट गई.
0: जी जी जी जी जी. तो मैं पूछ रही थी, अब वो आपको बना देती हैं क्योंकि उन्हें तो डॉक्टर ने मना कर दिया
1: है. बाकी काम बेशक वो मेरे कोई ना करे, उन्हें कहे ना जर्दा बना दे, रात को 1 बजे उठ के बना देगी. मीठे का शौक है, चाय का और मीठे का.
0: माशाल्लाह.
1: सोई भी हो ना, उन्हें वो दूसरे कमरे में कहना जर्दा खाना है या हलवा बनाना है या कोई मीठी चीज का नाम ले, उठ के आ जाए. अच्छा मैं अभी बना देती हूँ. बाकी काम सर ना करें, मीठे और चाय को उन्हें बड़ा. और उन्हें मना हो गई है और मुझे लग गई है. लेकिन मैं वो तरीका निकाला हूँ. मैं बच्चियाँ पूछती है ना, मैं आधा कप पी लेता हूँ. बार बार पीनी पड़ती है फिर आधा कप. बहरहाल चाय अच्छी चीज है, लेकिन इतदाल में हर चीज अच्छी लगती है. इतदाल में पीने बंदा
0: बिल्कुल
1: हर चीज की, तो फिर नुकसान. इन्होंने बहुत ज्यादा पी है, 20-20 कप पिए हैं रोज के मग बल के. तो अब ये घुटनों का मसला हो गया इनको. तो वो हर चीज का एक इत्तेदाल होता है. आप पिए हर चीज शौक से खाए पिए, कॉफी भी अच्छी है चाय. और आप बेटा आप पीर के पी रहती हैं?
0: जी जी जी, 11 से 1.
1: एक बेटा पूछना था कि मैं इस्लामाबाद में जब भी आपका 101 का प्रोग्राम होता है, मैं वहाँ लाता हूँ 051-111-000-101, वो नंबर मिलता नहीं है. ये मैं गलत नंबर तो नहीं लाता?
0: ये मैं आपको चेक करके बता देती हूँ. ठीक है,
1: अच्छा चलें.
0: बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़. और जनाब सलमान साहब हमारे साथ मौजूद थे और अल्लाह ताला सेहत दे जनाब आप सबको. और जाते जाते समअप करते हैं आज के शो को. और हम बात कर रहे थे आज चाय के हवाले से, चाय कितनी पीते हैं. सो ज़ाती तौर पे मैं अपनी बात करूँ तो मैं बस 1 से 2 कप मैक्स पीती हूँ, लेकिन पीती हूँ. और सलमान साहब जाते जाते बहुत खूबसूरत बात कर गए, मेरी बात कर गए जो मैंने बात करनी थी, कि अच्छी चीज़ है, पीनी चाहिए. जिस तरह से आपको पसंद है वैसे ही पिएं. आपको चाय चीनी के साथ पसंद है, चीनी के साथ पिएं. चीनी के बगैर पसंद है, चीनी के बगैर पिएं. आप ब्लैक टी पिएं, ग्रीन टी पिएं, लेकिन कोशिश ये करें कि एक बैलेंस रहे. क्योंकि किसी भी चीज़ की मैं अगेन रिपीट करूँगी, किसी भी चीज़ की जो ज़्यादती होती है वो हमें डिस्टर्ब करती है, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को, हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब करती है कहीं ना कहीं. सो खुशबाश रहें, सेहतमंद रहें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें, जहां भी हैं, जिस भी हाल में हैं. प्राउड टू बी पाकिस्तानी एंड से ऑलवेज पाकिस्तान जिंदाबाद. इसी के साथ आप सबसे कहूंगी टेक केयर, फी अमान अल्लाह. और जनाब आज इस ही ट्रैक के साथ मैं आज अपने शो का इख्तिताम कर रही हूँ. इस उम्मीद, इस ख्वाहिश के साथ जा रही हूँ आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट मंडे इन द सेम शो वी कॉल लेडीज लाउंज. टिल देन टेक केयर, फी अमान अल्लाह.

You're listening to FM 101, a Bale Bale Oshawa Shawa.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: अच्छा
1: के 2 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है, मोहम्मद अनीस से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरक्की और उसके अवाम की खुशहाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। सिंध हुकूमत और आलमी बैंक ने सूबे में बच्चों की नशोनुमा की कमी के तदारुक के लिए एक जामे हिकमत अमली पर इत्तफाक किया है। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल कश्मीर बनाने की अपील की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। पाकिस्तान के एहसान महसूद ने थाईलैंड में होने वाली ताइक्वांडो चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीत लिया है। और अब खबर

0: Hi, this is FM 101.
1: वादी वादी नगर नगर में गूंज उठी तकबीर, भाग यहां से हिंदू बनिए, जाग उठा कश्मीर। यौमे इस्तेहसाले कश्मीर, कश्मीरी आवाम से यकजहती के इजहार का दिन।
2: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
3: 101 FM।
1: नाहक बहे लहू अगर, जालिम पर हो ना जोर गर, वादी लहू लहू रहे कश्मीर के महाज पर, खड़े हैं हम खड़े रहेंगे। यौमे इस्तेहसाले कश्मीर, कश्मीरी अवाम से यकजहती, पाकिस्तानी अवाम का अज़्म।
4: दिस इज FM 101।
5: मूसलाधार बारिश और शदीद झालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें, जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो, ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
4: This is FM 101।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101।
6: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: क्या मेलोडियस खूबसूरत गीत सुनते पे जे। हेलो
1: अस्सलामुअलैकुम।
2: वालेकुम सलाम।
1: रावी रोड तो मलक अरशद बोल रहे हैं, पहली दफा कॉल कीती है।
0: ओ मेरा प्रणाम मलक अरशद, ओ पहली री कॉल ही कीती, ओ सानू लगदा सानू सदियां तो कॉल आ रही मेरे भरा दी।
1: भाई जान तानू बड़ा ही सुनीदा।
0: अच्छा
1: वेल डन वेल डन वेल डन।
0: बड़ी मेहरबानी।
1: मैं मेरे इच एनिया पौड़ियां नहीं चढ़न दी गुंजाइश है नहीं, तो मैं तेन उथे आके मिला।
0: हाय हाय हाय, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया।
1: गुफ्तगू सुनने इन्नी की गुफ्तगू सुनने
0: बिलकुल सही लफ्ज बोलिया ढिड मेरा भरा, क्या बात है क्या बात है क्या सही लोहरी है मेरा भरा सही पंजाबी शहजादा।
1: भाई साहब मैं भलवाना का धी पुत्र था।
0: okay.
1: मेरे अब्बा जी भी ताया जी ने भी भलवान कहने होंगे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: भोला गाड़ी साडे महल से ही रहा।
0: क्या बात है, बड़े बड़े खास बंदे का मैनु फोन आया अरशद भाई, बड़ी मेहरबानी तुमने कॉल की है।
1: मैं एक रिक्वेस्ट करांगा
0: जी। दसो
1: मलंगी फिल्म का गाना
0: केड़ा?
1: मैं जब किसी ने कॉल करना ना वही कहना माई वे सानू भुलना।
0: चलो चलो मैं तुहाडा प्रोग्राम शामिल करांगा गाना। ओके
1: इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होएगी।
0: अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
3: ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। और मेरा नाम अफशा हुमा है। मेरा PhD मेनली जो था वो क्रिटिकल पैराडाइम में था, करिकुलम क्रिटिकल एनालिसिस। और फिर मैंने पाकिस्तान में रहते हुए हायर सेकेंडरी सेकेंडरी और अंडर ग्रेड क्लासरूम्स के लिए एक क्रिटिकल पेडागोजी डिज़ाइन की बकायदा यहाँ के सिनेरियो को देखते हुए। एंड देन माई पोस्ट डॉक इज़ इन पीस पेडागोजी एंड पीस एजुकेशन। जब हम इन दोनों तीनों चीज़ों को मिला के देखते हैं और जो मेरा पिछला 27 ईयर्स हो गए टीचिंग लर्निंग रिसर्च और साइकोलॉजी की प्रैक्टिस में, तो कुछ चीज़ें बड़ी बाजे नज़र आने शुरू होती हैं। हम पहले बात कर लेते हैं इंक्लूजन ऑफ डाइवर्सिटी के ऊपर देखते हैं। जब हम क्रिटिकल लेंस से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई भी ऐसी सोसाइटी, कोई भी ऐसा कल्चर जहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत किस्म की हो, फॉर इंस्टेंस जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो वी ऑल नो के हमारे यहाँ एथनिक डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, फिर विद इन रिलीजन्स भी डाइवर्सिटी बहुत पाई जाती है, जेंडर बेस्ड डाइवर्सिटी तो है ही। ये तमाम डाइवर्सिटी के थ्रेड्स हैं जो मिल के एक सोसाइटी को स्ट्रक्चर कर रहे हैं। जब हम चाइल्डहुड में या एडोलेसेंस में या फिर अर्ली एडल्टहुड में हम मौजूद हैं इस सोसाइटी के अंदर, तो आइदर We are in an educational environment, या हम अपने घर पे फैमिली एनवायरनमेंट में या हम किसी नेबरहुड में हैं किसी भी सिनेरियो के अंदर। तो ये जो एज है और स्पेसिफिकली स्पीकिंग अगर हम बात करें 13 ईयर्स अबव, तो ये वो एज है जब किसी भी ह्यूमन बीइंग के हार्मोनल डेवलपमेंट हो रही है। इसका मतलब है कि इस वक्त रैशनल थिंकिंग भी डिवेलप होनी है और साथ साथ इमोशनल रिस्पॉन्स डिवेलप होना है। इस दौरान अगर चाइल्डहुड में भी ये बच्चा बहुत आइसोलेटेड रहा है, अपने ही जैसे लोगों में रहा है, अपनी ही कम्युनिटी में रहा है, एक क्लोज्ड सर्कल में रहा है, और अगर इस वक्त भी ये जो एडल्टहुड या एडोलेसेंस का अर्ली एडल्टहुड या एडोलेसेंस का पीरियड है, अगर इसमें भी वो बंद रहता है अपने जैसे लोगों में और डाइवर्सिटी को एक्सपीरियंस नहीं करता, तो दो तीन चीज़ों का खदशा होता है हमें। एक तो ये होता है कि वो क्योंकि चाइल्डहुड भी अपने जैसे लोगों में गुजरी, जो कि मोस्टली इन पाकिस्तान हम देखते हैं कि फैमिलीज अपनी ही जैसी फैमिलीज को मिलती हैं, वो लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से हो, वो एथनिक बैकग्राउंड से हो, रिलीजियस माइंडसेट हो, कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, तो वो अपने जैसे लोगों में सोशलाइज कर रहे होते हैं बच्चे। अब जब वो इस एज में आते हैं तो यहाँ तक आते आते उनके कुछ ईथोस और कुछ बिलीव्स डिवेलप कर दिए जाते हैं, और कर दिए जाते हैं इसलिए मैं कहती हूँ पैसिव वॉइस में कि एडल्ट ग्रुप कर रहा है। वो एडल्ट ग्रुप उसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उसके अंकल आंटीज भी हो सकते हैं, उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उसके टीचर्स भी हो सकते हैं, कोई भी एडल्ट ग्रुप जो उसके आस। तो वो बड़े स्ट्रांग बिलीव्स बाय द एज ऑफ 13 इनकलकेट होते जाते हैं। मैं सिर्फ वैल्यूज और नॉर्म्स नहीं कह रही, वो बिलीव्स की शक्ल में इनकलकेट हो जाते हैं और उसको ये लगता है कि जो मुझ जैसा है वो ठीक है और जो मुझसे डिफरेंट है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी गलत जगह पे खड़ा हुआ है, इसलिए वो मुझसे मुख्तलिफ है। तो ये चीज वर्बली कह के नहीं की जाती लेकिन हमारे सोशल इंटरेक्शंस में होती जाती है। इसको हम कहते हैं फिनोमेना ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, यानी कि आपने उस बच्चे को बिल्कुल एक एक्सक्लूजन में, एक कैप्सूल में रखा है और आपने उसको बारहा अपनी हरकतों से, अपने रवैयों से, अपनी बातचीत से, अपने लेन देन से, अपने मेल मिलन से ये बताया है कि अपने जैसे लोगों को मिलना है, अपने जैसे लोग ठीक होते हैं। और एक बहुत खतरनाक लफ्ज़ जो उसके साथ बड़ा होता है वो ये होता है कि अपने जैसे लोग सेफ होते हैं और बाकी सबसे वो अनसेफ फील करना शुरू कर देता है। अब जब वो 13 years ऑनवर्ड आया, जब उसने इमोशनल रिस्पॉन्स देना है टू द सोसाइटी, टू एवरीबडी अराउंड देम, तो ये जो पीछे एक बिलीफ डिवेलप हो गया, आपके इमोशंस इस बिलीफ के साथ रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहे होंगे। अगर उसको अपने से डिफरेंट कोई शख्स दोस्ती की ऑफर करता है, वो कॉलेज गया, यूनिवर्सिटी गया और वहाँ पर अब मल्टीपल डाइवर्सिटी थ्रेड्स हैं, लोग जगह जगह से आ रहे हैं, मुख्तलिफ तरह से आ रहे हैं। हम खुद गुजरे इस चीज़ से। व्हेन आई वेंट फ्रॉम अ प्राइवेट सेकेंडरी स्कूल टू अ गवर्नमेंट पब्लिक कॉलेज, हायर सेकेंडरी सेकेंडरी, अब क्या हुआ कि ये छोटा सा एक प्राइवेट स्कूल है, एक ही तरह के सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग, हाँ ये भी एक डाइवर्सिटी है, एक ही तरह के लोग वहाँ पे आ रहे थे, उसी तरह की फैमिलीज थी, क्योंकि छोटा सा एक प्राइवेट स्कूल है तो उसी विसिनिटी से लोग आ रहे थे। अब जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में जाती हूँ या मेरी तरह कोई भी बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जाता है तो वो देखता है कि अच्छा यहाँ तो हर तरह की लैंग्वेज, हर तरह के लोग और पब्लिक कॉलेजेस में डाइवर्सिटी हर किस्म की है, हर तरह के सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग। और फिर अगर इफ़ यू आर इन अ सिटी लाइक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, क्वेटा, पेशावर, तो ये क्योंकि हब्स हैं, ये क्योंकि बिजनेस के भी हब हैं, ट्रेड के भी हब हैं, तो सारे इलाकों से लोग वहाँ मौजूद होंगे। अब इसको सोशल इंटरेक्शन में मसला आना शुरू होता है, क्यों? क्योंकि इसने तो अपने जैसे लोगों के साथ अपना कंफर्ट जोन डेवलप किया हुआ है और सेफ्टी का भी बिल्कुल यही हो गया। अब इसके लिए ये बहुत बड़ा इशू है कि ये इस सर्कल से बाहर निकल के इंटरेक्ट, तो ये कुछ हद तक फॉर्मल सेटिंग्स में तो सबके साथ इंटरेक्ट करता है। फॉर्मल सेटिंग से मुराद ये ली जा सकती है कि टीचर ने एक असाइनमेंट दी है, उस पर ग्रुप ने काम करना है, वहां तक तो ठीक है। बियॉन्ड द क्लासरूम, और इसके ऊपर मैंने चंद साल पहले मेरे साथ एक पीएचडी के स्टूडेंट ने, हमने सोशल एक्सक्लूजन इन हायर एजुकेशन पे स्टडी की, तो हमने बियॉन्ड क्लासरूम की। क्लासरूम के अंदर तो एक फॉर्मल सेटअप है, बियॉन्ड क्लासरूम यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, तो आपको नजर आता है कि हाउ डू द यंगस्टर्स सोशलाइज, लड़कियां सेफ कर रही हैं लड़कियों के साथ, सेफ फील कर रही हैं, और चंद एक आपको मिंगल अप होते हुए ग्रुप नजर आ रहे थे। उस मिंगल अप होते हुए ग्रुप में भी बहुत रेयरली आपको लगेगा कि अच्छा इतने सारे लड़कों में एक या दो लड़की है, बड़ा इक्वल ना आपको एक रेशो प्रोपोर्शन नजर आता है कि अच्छा तीन चार लड़कियां इकट्ठी होंगी तो कहीं फिर वो मेल एनवायरमेंट में भी बैठेंगी, वरना वो अकेले डरेंगी और एक दो होते हुए भी डरेंगी। सिमिलरली इस्लामाबाद की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में जो हमारा पहला इंटरेक्शन था वो ये था कि जी हॉस्टल्स के कमरे लेने होते हैं, तो वहीं से झगड़ा शुरू हो जाता है कि नहीं नहीं मेरे साथ, मैं पंजाब से हूँ मेरे साथ पंजाबी को ही रखना है, मैं सिंध से हूँ मेरे साथ सिंधी को रखना है। अगर किसी को रूम्स अलॉट हो गए हैं दो डिफरेंट, तो नॉट ओनली एथनिसिटी बल्कि वो रिलीजियस लेवल के ऊपर भी, मैं मुस्लिम हूँ मुझे मुस्लिम के साथ ही रहना है, या मैं क्रिश्चियन हूँ मुझे किसी क्रिश्चियन के साथ ही रहना है, या एनी अदर। हुआ क्या, इन बच्चों को नहीं पता चला कि इनके इनकी ग्रूमिंग में इनको एक वैल्यू सिस्टम ने ये बिलीफ दे दिया कि यू आर सेफ विद द पीपल हु आर लाइक यू। अब यहाँ से जब मैं लव सेफ इस्तेमाल कर रही हूँ, तो अगर आप मैस्लोज की हायरार्की से थोड़ा सा आपको नो हाउ है, तो वी आर मोस्ट कंफर्टेबल वेयर एवर वी फील सेफ, वी आर मोस्ट कंफर्टेबल विद द पीपल वी फील सेफ। जब आप सेफ ही फील नहीं कर रहे तो फिर आप इंटरेक्ट कैसे करेंगे, फिर तो आप बड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, बात करने से पहले बड़ा फिल्टर कर रहे होंगे और दूसरी तरफ से जो बात आ रही होगी उसको आप जज कर रहे हो, और जज क्यों कर रहे होंगे, क्योंकि एक और लफ्ज है जो हमें समझने की ज़रूरत है, वो कहलाता है इम्प्लिसिट बायसेस, मेरे साथ साथ मेरे इम्प्लिसिट बायसेस ग्रो कर गए। और इसकी सिर्फ ये नहीं है कि मैं सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा, इन इम्प्लिसिट बायसेस में ये भी हो सकता है कि मैं किसी एक्स कम्युनिटी को या किसी एक्स जेंडर को या किसी एक्स रिलीजियस स्कूल ऑफ थॉट को अपने से लेस इंटेलिजेंट समझता हूँ। यहाँ के लोग बड़े शार्प होते हैं, यहाँ के लोग तो बेवकूफ होते हैं। अब इस तरह के इम्प्लिसिट बायसेस मेरे साथ साथ ग्रो कर, ठीक है, यहाँ के लोग बड़े फ्रेंडली होते हैं, यहाँ के लोग तो बड़े दुश्मनदार होते हैं। अब ये इम्प्लिसिट बायसेस है जो मेरे साथ ग्रो कर गए। तो मैं अगर सोशल इंटरेक्शन से थोड़ा आगे बढ़ना की भी कोशिश करूंगी तो मेरे अंदर इम्प्लिसिट बायसेस के फिल्टर लगे हुए हैं, और जब भी मैं उनके साथ इंटरेक्ट करूंगी तो वो मुझे अपने तई एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में ले जाएगा और दूसरे को मैं लुक डाउन कर रही हूँ। द फर्स्ट स्टेज इज टू बी इंक्लूसिव, नॉट ओनली इन योर फॉर्मल सेटिंग्स, इन योर इनफॉर्मल सेटिंग्स, बट इन योर थॉट प्रोसेसेस, जहाँ एजुकेशन, रिसर्च, वर्क, इनोवेशन ये सब कुछ आना है, वहाँ ज़रूरत है आपको अपने दिमागों को खोलने की। इंसान को जो बहुत अच्छी सकत हासिल है वो ये है कि वो किसी भी एज में अगर वो अपनी मेटाकॉग्निशन को यूज़ करे, रिफ्लेक्ट करे, ये रिफ्लेक्शन करते जाएं, तो यू कैन आइडेंटिफाई योर बायसेस एंड यू कैन रिमूव देम विद कॉन्शियस एफर्ट। और जैसे जैसे आप देखेंगे कि आपके बायसेस कम होते जाएंगे, वैसे वैसे आप एक इंक्लूसिव पर्सन भी होते जाएंगे, और फिर आप इंक्लूसिव स्पेस भी क्रिएट करेंगे अपने आसपास, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे वो वर्क।
0: लो जी नाम एक बार फिर तुम अपने प्रोग्राम के जी एन कहना, टेलीफोन नंबर है 0042-111-0001-01। आप वेखते हैं सानू किन्ने याद किया। सलाम वालेकुम भान,
1: जो
0: मौसम ठंडा हुंदा है, बारिश बुरश पैंदी है, ते तुसी की खांदे जे, की दिल करदा तुहाडा?
1: ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਨਾ 101 ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਭ ਪੀਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ 30-35 ਕੱਪ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਪੀਂਦੀ ਸੀ।
0: ਅੱਛਾ,
1: ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾਤੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬੱਚੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਆਪ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਜ਼ਰਦਾ ਬਣਾ ਜਾਂ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਚਾਹੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਖੁਦ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ,
0: ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਕਿ ਲੂਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਜੇ?
1: ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨੀ, ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
0: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ,
1: ਫੁੱਲ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਲਵੇ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਤਾਂ ਦੱਸੀ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮਲਦੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਲਵੇ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਦੱਸੋ, ਅੱਖਾਂ ਮਲਣ ਡਈ ਏ, ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਹਲਵੇ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਗੀ, ਇੰਨੇ ਬਦਾਮ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਗਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਇੰਨਾ ਚੋ ਪਾਣੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਭਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿੱਠੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ।
0: ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਉਸਤਾਦ ਹੈਗੇ ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਮਾਨ ਭੱਟ, ਬੜੇ ਉਸਤਾਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਲੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ,
1: ਇੱਥੇ ਭਾਣੇ ਕੋਲ ਦੇ ਬਹਿਣਗੇ ਨਾ।
0: ਚਲੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਮਾਨ ਭੱਟ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ।
1: ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ,
0: ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਓਲਡ ਗਰੋ ਭਾਣ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਓਲਡ ਗਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਲਾਈਵ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਮਗਰ ਮਜੂਸੀ, ਹੈਲੋ,
2: ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।
0: ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ,
2: ਖਾਨ ਬਾਬਾ
0: ਖਾਨ ਬਾਬਾ, ਕਿਆ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਆਪਕੇ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ?
2: ਉਹ ਅਲਕਾ ਤੋ ਸੰਗੀ ਹੈ,
0: ਹਾਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
2: ਤੁਹਾਡਾ ਵੋ ਹੈ ਤੋ ਹਮਾਰਾ ਬਦਰੂ ਮੁਨੀਰ ਹੈ,
0: ਹਾਂ
2: ਹਮਾਰਾ ਬਦਰੂ ਮੁਨੀਰ ਫਨਕਾਰ ਹੈ,
0: ਹਾਂ ਬਦਰ ਮੁਨੀਰ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਦਰ ਮੁਨੀਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫਨਕਾਰ ਥਾ, ਔਰ ਆਸਿਫ ਖਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫਨਕਾਰ ਥਾ।
2: ਕਿਆ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਬਾਈ,
0: ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ?
2: ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰਾਂ ਬਾਈ, ਇਹ ਮੌਸਮ ਚ ਅਸੀਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਖਿਚੜੀ।
0: ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦਾਲ ਦੀ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾ ਦੇ ਜੇ?
2: ਉਹ ਖਿਚੜੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ
0: ਹਾਂ,
2: ਤੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੜੀ।
0: ਓ ਹੋ ਹੋ ਹੋ ਹੋ ਹੋ ਹੋ, ਲੋ ਜੀ ਕੜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੱਜ ਪੱਕੀ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਖਿਚੜੀ ਜਾ ਕੇ ਬਣਵਾ ਲਾਂਗਾ।
2: ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਿਚੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਚੌਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣੋ ਪੜਾਕੀ ਨਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਬਰਫਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੌਲ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਚੌਲ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਚੜੀ ਖਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੰਗਲੀਆਂ ਚੱਟ ਕੇ ਖਾਵਾਂ।
0: ਸਹੀ ਗੱਲ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਲੋ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੇ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਓਕੇ ਜੀ।

0: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर, तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मुरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहाइश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
1: वादी वादी नगर नगर में गूंज उठी तकबीर, वादी वादी नगर नगर में गूंज उठी तकबीर, भाग यहां से हिंदू बनिए, जाग उठा कश्मीर। यौमे इस्तेहसाले कश्मीर, कश्मीरी आवाम से यकजहती के इजहार का दिन।
2: मूसलाधार बारिश और शदीद झालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
3: This is FM 101.
0: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. To the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: Hi, this is FM 101.
1: वादी वादी नगर नगर में गूंज उठी तकबीर, भाग यहां से हिंदू बनिए, जाग उठा कश्मीर। यौमे इस्तेहसाले कश्मीर, कश्मीरी आवाम से यकजहती के इजहार का दिन।
2: 101 FM।
3: मूसलाधार बारिश और शदीद झालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
4: This is FM 101, where your spirit is set free.
2: 101.
1: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मुरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरतेहाल में खुसूसी तवज्जा दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, SMS वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
5: This is FM 101.
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.
6: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: शाम के 5 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। रिजवाना महताब से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरक्की और उसके आवाम की खुशहाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की खुफिया इतलात पर मबनी कार्रवाइयां जारी हैं। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तआवुन से पाकिस्तान में सरमायाकारी और सनअती तरक्की को नई सिमत मिल रही है। और आज पोर्ट ऑफ स्पेन में पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन वेस्टइंडीज अपनी पहली इनिंग्स 239 रन 5 खिलाड़ी आउट पर आज फिर शुरू करेगा।
1: कमिंग अप नेक्स्ट, वादी वादी नगर नगर में गूंज उठी तकबीर, भाग यहां से हिंदू बनिए, जाग उठा कश्मीर। यौमे इस्तेहसाले कश्मीर, कश्मीरी आवाम से यकजहती के इजहार का दिन।
2: दिस इज FM 101 where your spirit is set free. 101 FM.
3: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मुरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहाइश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. Radio Pakistan.
5: There's music, and then there's magic. One above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

this music, and then there's One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

Assalamualaikum, Assalamualaikum Pakistan and Assalamualaikum Lahore. Alright, जी, this is your आज हमना खान और रेडियो पाकिस्तान है 101 के लाइव ऑन लाहौर स्टूडियो से. जी हाँ, लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं आज हमना खान को, मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक ठीक ठीक जी 8 बजे तक. और 6:05 हुए, आज 3 अगस्त 2026 है, दिन है पीर का. और आपको पता है कि जैसे ही अगस्त का महीना स्टार्ट होता है, यानी हमारी आज़ादी का जश्न, आज़ादी का महीना स्टार्ट होता है, तो हमारी रेडियो पाकिस्तान की ये रिवायत है, रेडियो पाकिस्तान लाहौर के स्टेशन से हम एक स्पेशल ट्रांसमिशन लेकर आते हैं. और ये ट्रांसमिशन जो है वो 1 अगस्त से 14 अगस्त तक जारी रहती है. इस ट्रांसमिशन में हमारी भरपूर कोशिश होती है कि हम अपना अपना एक इनफरादी तौर पर, इज्तमाही तौर पर जो किरदार है वो अदा कर सकें और अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें. और इसके साथ साथ शोर जो है वो आवाम में पैदा किया जा सके. नौजवान जो मुझे सुन रहे हैं इस टाइम, पीछे जो मेरे मिली नगमा चल रहा है, ये नॉस्टैल्जिक है और हम सब रिलेट कर सकते हैं. इवन अब जो यंगस्टर सुन रहे हैं, जो नई जेंजी सुन रही है, वो भी मुझे पता है कि इसके साथ इतना ही रिलेट करी होगी, इतना ही इंजॉय करी होगी. तो ज़रा इसको सुनते हैं और फिर बात करते हैं.

और राइट जी, बिल्कुल जी, जश्न आज़ादी तो हम भरपूर तरीके से मनाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैं जैसे बात करें कि कुछ जिम्मेदारियां हैं हम पर अपने वतन की, इस मिट्टी की, इस आज़ादी की, और आज़ादी से सांस लेने की कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ तकाजे हैं जो हमें पूरे करने चाहिए, और सिर्फ झंडियाँ नहीं लगानी, झंडियों का एहतराम भी करना है, बल्कि मुल्क को संवारने की कोशिश भी करनी है, और उसके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हमारी मुश्किलात हैं जिनको हम हल कर सकते हैं, जिसमें माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं, जिसमें अपने मुल्क को संवारने की कोशिश की जा सकती है, हम एनवायरनमेंट पे काम कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि इस आज़ादी के मौके पर ना हम ये बात करें कि हम अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को, अपने क्लाइमेटिक चेंजेस के जो अभी हमारे अलार्मिंग सिचुएशन है उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और हम अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं उसमें। अच्छा जी, अभी मेरी नज़रों से जो है ना एक मिली नगमा गुजरा, और ये मिली नगमा मैं अगेन वही वर्ड्स यूज़ करूँगी कि बहुत नॉस्टैल्जिक है, मैंने आपने हम सब ने बचपन में सुना हुआ। मैं जा रही हूँ कि इस मिली नगमे को थोड़ा सा हम इंजॉय करते हैं, सुनते हैं, थोड़ा सा अपना हुब्बुल वतनी का जज्बा और बढ़ाते हैं, और फिर हम बात करते हैं कि किस तरह से हम लोग अपना रोल प्ले कर सकते हैं, और किस तरह से हम इस साल में एक अहद कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए, माहौलियाती तब्दीलियों से अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने मुल्क को संवारने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पे बात करते हैं।

बिल्कुल जी, इस मिले नगमे को सुनकर जो है मुझे अपना स्कूल टाइम याद आ गया, और वो असेंबली और जो स्कूल में एक तकरीबात हुआ करती थी, अभी भी होती हैं, लेकिन अपने बचपन की बात कुछ और थी। और ये मिले नगमा सुनकर जो है ना, मैं एकदम से बस, आप कहते हैं ना कि आप अपने माजी में चले जाते हैं, तो बिल्कुल जी हम भी अपने माजी को याद कर रहे हैं, अपनी कुर्बानियों को याद कर रहे हैं जो हमारे बड़ों ने दी, हमारे बुज़ुर्गों ने दी, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं। आज ये वतन हमारे पास है, हम आज़ादी से सांस ले रहे हैं, हम इस मुल्क को संवारने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारा क्या किरदार होगा। तो मैं बस यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, बल्कि मैं आप लोगों से भी चाहूँगी कि आप लोग अपने भी जो आपके मोटिव्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, या जो आप करना चाह रहे हैं अपने मुल्क के लिए, जो आप रोल प्ले करना चाह रहे हैं, उसको भी आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। ज़रूर आप लोग कॉल्स पर शामिल हो सकते हैं हमारे साथ 0422111001 पर, और इसके साथ साथ आप लोग फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, fizz.com/fm11lahore के पेज पर आपने जाना है जी, पोस्ट अपडेट या लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ शेयर भी कर सकते हैं। बिल्कुल जी, मैं बात कर रही थी कि माहौलियाती तब्दीली का हमें सामना करना पड़ रहा है, और इस हवाले से स्मोग है और जो प्लास्टिक की आलूदगी है, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनका हम शिकार हैं। और इस यौम आज़ादी पे मैं चाहूँगी कि हम अगर ये अहद करें कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को किस तरह से साफ़ रख सकते हैं, हम एक पौधा लगाएं, अपने माहौल को साफ़ रखें, और अपने मुल्क को वैसा ही खूबसूरत बनाएं जैसा कि हमारे बड़ों ने ख्वाब देखा था, और वो मुल्क जैसा हमें मिला था, हम उस मुल्क को वैसे ही साफ़ सुथरा खूबसूरत रखें, अपना रोल प्ले करें, कानून की खिलाफ वर्जी ना करें, और एज अ ह्यूमन, एज अ सिटीज़न जो है, अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा करें। तो अगर आप लोगों के पास भी ऐसे कुछ मोटिव्स हैं, कुछ गोल्स हैं, और थोड़ा सा आपका जज्बा बढ़ रहा है ना, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ जो है ना, सोचें, कुछ कुछ करें। और कतरा कतरा करके, कहते हैं ना दरिया बनता है, तो कतरा कतरा करके ही दरिया बनता है। बिल्कुल जी, मैं, आप, हम सब जो है ना, आज इस बारे में बात करेंगे, सोचेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं, तो मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी उस चीज़ को, और मैं सुनना चाहूँगी कि आप अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं।

0: भी हम सिंह जहांगीर और आप सबको पता है कि जश्न आजादी हम भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी आन है, पाकिस्तान है तो हमारी शान है, पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: This is FM 101.
2: जी वेलकम बैक वंस अगेन। हम जश्न आज़ादी की बात करें, जश्न आज़ादी की ट्रांसमिशन जारी सारी है और ये 14 अगस्त तक ऐसे ही जारी रहेगी और रेडियो पाकिस्तान एफएम 101 लाहौर के स्टेशन से हम आपके साथ ऐसे ही जो जोश है, जो वलवला है और जो जज्बात हैं अपने शेयर करते रहेंगे, आपके भी सुनते रहेंगे। हम जश्न आज़ादी की बात कर रहे हैं लेकिन जब भी अगस्त का महीना आता है, जब भी हम जश्न आज़ादी की बात करते हैं तो उसके साथ साथ हम अपने उन बहन भाइयों को कैसे भूल सकते हैं जिनके आज़ादी, जिनसे उनकी आज़ादी, उनकी शनाख्त जो है वो छीनने की कोशिश की गई। मैं बात कर रही हूँ 5 अगस्त 2019 की, जब हम बात कर रहे हैं कश्मीरियों की, यौम एहतसाल कश्मीर की मैं बात करना चाह रही हूँ, यहाँ पर कश्मीरियों की बात करना चाह रही हूँ, उस बर्बरियत के दिन की बात करना चाह रही हूँ।

बिल्कुल जी, हम याद कर रहे हैं उस स्याह दिन को, 5 अगस्त 2019, जब भारत ने गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू व कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म करके बर्बरियत की एक नई दास्तान रकम की। और आज भी जो है हम इस जुल्म पर आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन भारत ये तो जानता है कि जुल्म की जो शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये मत भूले कि जुल्म की रात जो है ना, जितनी भी तवील हो, सहर होकर रहती है। कश्मीरियों का ये नाकाबले तस्खीर जज्बा हमें बताता है कि हक उहद इरादियत की ये आवाज़ कभी दबाई नहीं जा सकती। हमारी दुआएं और हमारी आवाज़ हमेशा कश्मीर के साथ है।

Alright, ji, alright, alright. Welcome back once again, Radio Pakistan FM 101 ke live on Lahore studio se. आप सुन रहे हैं आज हमदा खान को मेरा आपका साथ रहेगा ठीक जी 8 बजे तक. इट्स 6:28 PM ऑन द डायल. अगस्त का महीना है, यौम आज़ादी की हम बात कर रहे हैं, ट्रांसमिशन हमारी जारी है. और इस हवाले से मैंने आप लोगों से भी जिक्र किया कि अगर आप लोग अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, अपना रोल प्ले करना चाह रहे हैं, कुछ ऑलरेडी कर रहे हैं, तो ज़रूर शेयर करें कुछ थोड़ा सा जो है ना. मैंने आप लोगों को आइडियाज़ दिए कि हम किस तरह से इस यौम आज़ादी पर जो है वो हम अपना एक गोल सेट कर सकते हैं कि हम कैसे अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं और क्या रोल प्ले कर सकते हैं अपने मुल्क के जो मसाइल हैं, जो इस टाइम माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं, उनके लिए हम कैसे रोल प्ले कर सकते हैं, किस तरह से हम जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मना सकते हैं. और इसके साथ साथ जश्न आज़ादी तो मना रहे हैं, बाज़ारों में गहमा गहमी है, बच्चे तैयारियाँ कर रहे हैं, चूड़ियाँ ख़रीद रहे हैं, कोई कपड़े ख़रीद रहे हैं, हरा रंग जो है वो हर तरफ नज़र आ रहा है, छतों पर झंडे लगाए जा रहे हैं. लेकिन इसके साथ साथ मैं हर साल इस प्लेटफॉर्म से ये बात करती हूँ कि हमने उस झंडे की इज्जत करनी है, उसको संभाल के रखना है, उसकी कदर करनी है, उसका ख्याल रखना है. और अगर आपको कहीं कोई झंडी मिलती है, कहीं गिरी हुई, उसको फौरन आपने उठाना है, संभालना है, समेटना है, क्योंकि ये हमारे मुल्क की पहचान है. और आज़ादी से सांस लेना, इस आज़ादी की नेमत की कदर जो है ना वो हमें तब होती है जब हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों को देखते हैं, हम बात करते हैं भारतीय बर्बरियत की, हम बात करते हैं उस जुल्म की जिसकी इंतहा हो गई है. और अभी हमारे साथ ऑफ द रब हमीद साहब मौजूद थे, उन्होंने भी यही बात की हम इंशाल्लाह एक दिन ये दिन देखेंगे और इंशाल्लाह हम देखेंगे. और इसके साथ साथ इस नेमत की भी बात की उन्होंने कि कितनी बड़ी नेमत है आज़ादी की, हम सुबह उठते हैं सुकून से अपने मुल्क में आज़ादी की सांस ले रहे हैं. तो बिल्कुल जी, हम यहाँ पे कश्मीरियों के राइट्स की बात कर रहे हैं क्योंकि कश्मीर सिर्फ एक खत्ता नहीं है, लाखों इंसानों का घर है.

बिल्कुल जी, ये यौम आज़ादी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। इस हवाले से अगर आपके पास भी कोई इस तरह का गोल है जो आप इस साल सेट करना चाह रहे हैं, अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ इनफरादी तौर पर, कुछ आप अपने साथ, कुछ इज्तमाही तौर पर अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, कम्यूनिटी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, छोटे छोटे छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं ना, जैसे कहते हैं ना बेबी स्टेप्स, या जैसे कहते हैं कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है, तो कुछ भी अगर आप करना चाहते हैं अपने मुल्क के लिए, कोई आइडियाज़ हैं आपके पास, आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं तो मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगी। हमारे प्लेटफॉर्म से आप शेयर कर सकते हैं कि जी आप क्या कर रहे हैं ऑलरेडी मुल्क के लिए, इस साल आपका क्या अज़्म है अपने मुल्क के लिए, बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं। 0400111111 पर आप लोग कॉल कर सकते हैं, ऑफर कॉल्स का सिलसिला जारी है। और इसके साथ साथ आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं fizz.com/F11Lahore के पेज पर, आपने जाना है जी, पोस्ट अपडेट है, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि इस साल आप यौम आज़ादी पर क्या कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए।

राइट जी, उसके साथ साथ कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। लाहौर के मौसम की अगर बात करें तो सुबह से मैं देख रही हूँ कि वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, और ये बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा आने वाले कई दिनों तक। जो है वो बारिशों की प्रेडिक्शन है, और इस हवाले से जो है वो NDMA ने भी अलर्ट जारी किया है, जिस हवाले से मैं चाहूँगी कि मैं अपने तमाम सुनने वालों को जो है वो आगाह करती चलूँ इस हवाले से कि बहुत जो अलर्ट इस टाइम है उसके हवाले से जो है वो एक नया सिस्टम जो है वो दाखिल हो चुका है। और यकम अगस्त 2026 से ये वार्निंग्स है, जिसमें कश्मीर में, पंजाब में, सिंध, KPK और गिलगित बल्तिस्तान, हर तरफ जो है वो तेज़ हवाओं और तेज़ बारिश के इम्कानात हैं, अर्बन फ्लडिंग के इम्कानात हैं, और इस हवाले से लैंडस्लाइडिंग या फ्लैश फ्लड के खतरात भी हैं, और जिस वजह से टूरिस्ट वगैरह को भी मना किया जा रहा है कि आप भी इस मौसम में जो है वो एहतियात करें। आप बारिश के इम्कानात हैं, अर्बन फ्लडिंग के इम्कानात हैं, और इस हवाले से लैंडस्लाइडिंग या फ्लैश फ्लड के खतरात भी हैं, और जिस वजह से टूरिस्ट वगैरह को भी मना किया जा रहा है कि आप भी इस मौसम

एक जो बात की जा रही है वो ये बात की जा रही है कि किस तरह से सेफ्टी टिप्स जो हैं या अवेयरनेस जो है वो किस तरह से फैलाई जा सकती है, उस पर भी कुछ बात करते हैं। बिल्कुल जी, इस हवाले से जो बहुत बहुत बहुत अहम पॉइंट है ना, हम हमेशा समझते हैं कि बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, तो किसी दरख्त के नीचे या किसी पोल के नीचे जो है वो हम एक सायादार जगह देखकर जो है वो हम रुक जाते हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना, आपने किसी भी दरख्त के नीचे या पोल्स के नीचे जो है, क्योंकि ऐसी जो दरख्त होते हैं या जो पोल्स होते हैं ये जो हैं वो बिजली को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और ये आपको इतना प्रोटेक्ट नहीं कर सकते अगर यालाबारी हो रही है या तेज़ बारिश हो रही है। और ऐसे में इस मौसम में वैसे भी दरख्त जो हैं उनके गिरने का, मिट्टी क्योंकि खुल जाती है, नरम हो जाती है, तो इतनी मजबूती नहीं होती, दरख्त गिरने का, खंभों के गिरने का भी ख़तरा होता है। और इसके अलावा जी, आपने ओपन फील्ड्स, जो खुली मैदान हैं या जो हिल टॉप्स हैं उनको भी अवॉइड करना है। आपने इस तरह के इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस, जो बरकी आलात हैं उनको भी अवॉइड करना है, जिनकी वजह से आपको लगता है कि ये जो हैं वो ख़तरा पैदा कर सकती हैं, उनको भी आपने अवॉइड करना है। इसके अलावा आपने किसी किस्म की जो ड्रेनेज होते हैं उनके पास खड़े होने से भी अपने आप को अवॉइड करना। और आपने जब भी आपको ऐसे मौसम लगे, आपने फ़ौरन किसी ऐसी जगह पे, किसी ऐसी अच्छी मतलब जिस इमारत की कंडीशन अच्छी है, जहाँ शेल्टर प्रॉपरली है, वहाँ पर आपने जो है वो शेल्टर लेना है। कभी भी आपने किसी नाकिस हालत की और कोई ऐसी जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, कभी भी आपने उसके अंदर जो है वो शेल्टर नहीं लेना। आपने ये नहीं समझना कि ये अभी बन रही है, ये खस्ता हाल नहीं है, तो आप उसके अंदर शेल्टर ले लें, आपने उसके अंदर शेल्टर भी नहीं लेना। और आज इसके अलावा जो है NDMA ने जो ट्रैवलर्स हैं, जो टूरिस्ट हैं, जो सयाह हैं, जो ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उनके हवाले से भी उनको भी कुछ एडवाइजरी उन्होंने जारी की है, इस पर भी बात करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप ट्रैवल करने को प्लान कर रहे हैं, आपको पिकनिक या कोई टूरिस्ट स्पॉट देखना चाह रहे हैं, हमेशा हमेशा हमेशा जी आपने अपना वेदर ज़रूर देखना है, आपने ट्रैफिक कंडीशन ज़रूर देख कर जानी है। इसके अलावा जी, आपने अपना जो कूड़ा है, गारबेज है, जो भी आप खाते पीते हैं, उसको जो है वो आपने ज़रूर जो है वो ड्रेनेज सिस्टम से दूर रखना है। हम इस चीज़ पे अभी भी बात कर रहे थे, जैसे हम अपने मुल्क के लिए कह रहे हैं ना कि कुछ करना चाहते हैं हम अपने मुल्क के लिए, सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग जिसका हमने ख़ास ख़ास ख़ास ख्याल रखना है कि हम जी किसी भी ऐसे ड्रेनेज सिस्टम में अपना कूड़ा ना फेंकें, किसी भी ऐसी जगह पर अपना कूड़ा उसको प्रॉपरली डिस्पोज करें, किसी डस्टबिन में फेंकें। या आपको पता है कि अगर कूड़ा कुछ इस तरह का है जो कि खाद बन सकती है, तो उसको आप मिट्टी में दबा दें। और बिल्कुल जी, अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आपके पास पीने का साफ पानी होना चाहिए, खुराक होनी चाहिए, बच्चों को आपने जो है वो नदी नालों और इनसे दूर रखना है। इसके अलावा आपने वेदर अप्रोप्रिएट क्लोथिंग जो है वो करनी है, मौसम किस तरह के उस लिहाज से कपड़े आपने रखने हैं। आपने किसी भी किस्म के दरिया से, नालों से, नदी नालों से जो है वो डिस्टेंस मेंटेन रखना है। और कोशिश करनी है कि जी आप स्विमिंग अवॉइड करें, और आप कभी भी जो सैलाबी पानी है इसको जो है वो क्रॉस करने की कोशिश ना करें, आप दरिया को क्रॉस करने की कोशिश ना करें अपनी गाड़ियों के थ्रू, या आप कहें कि पानी कम है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि पानी किस कदर है, और आपने पैदल चलने की, पैदल क्रॉस करने की जो है वो कोशिश नहीं करनी। आपने अवॉइड करना है कि आप किसी ऐसी जगह पर हाइकिंग में ना जाएँ, ट्रैकिंग करने ना जाएँ, या कैंपिंग करने ना जाएँ, जहाँ पर हैवी रेन का रिस्क है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, जिसकी वजह से स्लिपरी हो सकती है जगह, और जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड जो है वो इंक्रीज हो सकता है। और स्पेशली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम एडवेंचरस लोग करने की कोशिश करते हैं लेकिन आपने नहीं करनी, और वो ये कि आप किसी भी अगर अनफेमिलियर, मतलब जिस जगह को आप नहीं जानते, कोई एरिया आपके लिए नहीं है, नया है, और स्पेशली जो ये पहाड़ी इलाका जात होते हैं, वहाँ पर आपने कभी भी हुड ड्राइव नहीं करनी। अगर आपको नहीं पता उन रास्तों का, आपको उन रोड्स का नहीं पता, तो आपने कभी भी वहाँ पर जो है ना, और बारिश के दौरान तो कभी भी आपने हमेशा आपने कोशिश करनी है कि जी आपके पास कोई लोकल वहाँ का मुकामी ड्राइवर हो जो गाड़ी चलाए, जिसको रास्तों का पता है, जिसको पता है कि यहाँ लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, जिसको मोड़, जिसे कहते हैं ना ख़तरनाक मोड़ जो आते हैं, उनका पता हो, जो उस जगह से, उस इलाके से, उन पहाड़ी सिलसिलों से फेमिलियर हो, वहाँ के वेदर से फेमिलियर हो। सिर्फ आपने उनके साथ जाना है।

0: स्वतंत्र जहांगीर और आप सबको पता है कि जश्न आजादी हम भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी आन है, पाकिस्तान है तो हमारी शान है। पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: This is FM 101.
2: FM 101, naal naal sade, te naal naal tuade. Kyun ji, koi shak hai kya?
3: There's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: All right, Jay, all right. Welcome back once again. Radio Pakistan 101 ke live in Lahore studio. Saab sun rahe hain, aaj Hamna Khan ko mera aur aapka saath rahega. Theek, theek, theek. Ji, 8 baje tak. Maine kaha, mausam achha hai, mausam haseen hai. Lekin uske saath saath hum baat kar rahe the, thodi si khane peene ki, thodi si chitori baatein bhi ho gayi. Ehtiyati tadabeer saath saath humne jo hai, wo ikhtiyar karni hai aur us pe hum baat bhi kar rahe hain. Aur main barha keh rahi hu, mere off-air callers bhi jo hai, abhi Haneef saab aisa maujood the, kehte hain ki unhone bhi bade अच्छी बात की. उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ मोटरसाइकिलों पे जब बारिश में रुकते हैं ब्रिज के नीचे तो एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि जो पीछे से स्पीड में गाड़ी आ रही होती है वो एट टाइम्स जो है वो अल्लाह ना करे अगर ब्रेक ना लग सके या कुछ भी ऐसे मामला, तो रोड स्लिपरी होती हैं. और रोड स्लिपरी होती हैं मुसलसल, जैसे आज लाहौर में बारिश हो रही है और आने वाले दिनों में बारिश होनी, तो ऐसे में रोड्स बहुत स्लिपरी होती हैं. तो कोशिश करें कि स्लो ड्राइव करें. और इसके साथ साथ इन्होंने एक बड़ी अच्छी टिप शेयर की, जो कि अगर ये लाइव कॉल पर आए तो मैं चाहूँगी कि ये थोड़ा सा और उस चीज़ को खुद एक्सप्लेन करें, जिसमें ये था कि अगर आपकी गाड़ी जो है वो ज़रा डीप पानी में से गुजरती है ना, मतलब पानी खड़ा हुआ पानी में से गुजरती है, और उसके बाद जब खुश्के पे पानी में, मतलब जब रोड क्लियर होती है, जब खुश्क रोड आती है, तो आपने दो तीन दफ़ा जो है वो अपनी ब्रेक लगाकर गाड़ी की देखनी है, ताकि उसकी डिस्क से जो पानी है वो निकल जाए और ऐसे जो है वो आपकी गाड़ी ठीक रहती है. क्योंकि इतने जब आप डीप पानी में से गाड़ी गुजारते हैं तो उसमें आपकी गाड़ी की ब्रेक्स ख़राब होने का, आपकी गाड़ी का इंजन ख़राब होने का भी जो है वो इंजन में पानी जाने का ख़तरा भी होता है. और जी, इसके साथ साथ बैकग्राउंड पे जो आप म्यूज़िक सुन रहे हैं ना, जो गाना आप सुन रहे हैं, जो ट्रैक आप सुन रहे हैं, ये आतिफ़ की नई एल्बम का गाना है. आतिफ़ असलम की आवाज़ है जी. खूबसूरत सी एल्बम उन्होंने अपनी अपनी निकाली है, लॉन्च की है, जिसका नाम है सुब आए ना.
1: तेरे बिना मैं,
0: तो इसको इंजॉय करते हैं जी. और जो मैं बात कर रही थी ना कि इस अच्छे मौसम में कुछ अच्छा खाने का दिल करता है, तो अभी हनीफ साहब मुझे यही कह रहे थे कि आप सबको मना कर रही हैं कि फूड पॉइजनिंग होगी और साफ सुथरा खाएं, तो मुझे तो लगता है शो के बाद आपने खुद ऑर्डर कर देना. तो मैंने कहा बात यही है, बात यही है कि मेरा अपना दिल चाह रहा है और मुझे पता है कि कभी कभी ना आप नहीं होल्ड कर पाते और वो जो मज़ा आपको आता है ना कि बाहर का ही खाना है और बाहर वाला ही हो. लेकिन ये एहतियात बहुत ज़रूरी है इस मौसम में, ख़ास तौर पर कोशिश करें, अवॉइड करें. मैं भी अवॉइड करती हूँ, आप भी अवॉइड करें कि बाहर का ना खाएं.

All right. Welcome back once again. It's 6:55 PM on the dial. और अभी हमारे साथ जट साहब मौजूद थे रावी के किनारे से और खूबसूरत बातें इन्होंने की, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने भी वही जिक्र किया जो अभी मैं आपके साथ NDMA के अलर्ट्स जारी कर रही थी और मैंने आपसे एडवाइजरी शेयर की उनकी, और उसमें जो एक पॉइंट बहुत अहम था ये भी उसी हवाले से बात कर रहे थे कि इनकी एक जो गाय है वो दरख्त गिरने से, खैर जो है अल्लाह ताला ने इनको गाय को, इनके लाइफ स्टॉक को जो है वो जानी नुकसान से जो है वो बचाया, जानी और माली नुकसान से अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, सबको अपने ईमान में रखे। और इस हवाले से जो इन्होंने बात की कि ये भी उस हवाले से केयर कर रहे हैं कि आपने अपने लाइफ स्टॉक को भी जो है वो कोशिश करनी है कि आपकी कोई भी जो है लाइफ स्टॉक, आपके माल मवेशी हैं, वो किसी ऐसे खम्भे या दरख्तों के आसपास जो है वो ना आप बांधें, उसका ख़ास ख्याल रखना आपने। और बिल्कुल जी बिल्कुल, हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं इससे पहले कि हम न्यूज़ ब्रेक की जानिब चले जाए। और जी इसके बाद हम 7 बजे के बाद जो है जी लाइव कॉल्स का सिलसिला भी शुरू करेंगे 04-2111-0011। और अभी ऑफ द कॉल्स आप लोगों की आ रही है, मुसलसल हम उठा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जी छोटी छोटी बात करें ताकि सबको मौका मिल सके, फिर आप बाद में मुझसे शिकायत करते हैं कि जी आपने कॉल नहीं उठाई। और राइट जी, फिर छोटी छोटी बातों को जो है ना आप लोग दिल पर लगा लेते हैं, और मेरा आज का जो सवाल है ना आपसे वो यही है कि जी हम हर बात दिल पर क्यों लगा लेते हैं, क्या वाकई ऐसे होता है आप लोग भी दिल पर लगा लेते हैं हर बात, और ये आदत जो है वो कैसे बन जाती है और इस आदत को ख़त्म कैसे कर सकते हैं, इसी पर आज बात करेंगे कि वो आदत जो आपको हर बात दिल पर लेने पर मजबूर करती है। वैसे होता है ना, सेंसिटिव होते हैं किसी एक पॉइंट पर, किसी एक रिश्ते में या किसी एक मौके पर जो है वो हमें होता है कि हम हर बात को, हर छोटी छोटी बात को जो है ना वो दिल पर ले लेते हैं। अगर आपकी भी ये आदत है, आपकी भी ये पार्ट ऑफ नेचर है, तो ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और इसको ठीक करने के लिए या इस चीज़ को कम करने के लिए या इस आदत को तब्दील करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, इस पर भी ज़रूर बताइएगा जी 04-2111-0011। और मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से हमें लगता है और क्यों हम छोटी छोटी बातों को जो है वो दिल पर ले लेते हैं, वो क्या ऐसी चीज़ें, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम नोट करते हैं और बस फिर हम कहते हैं कि नहीं अब ये जो है ना हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ और वो फिर हम दिल पर लगा लेते हैं। तो दिल पर नहीं लगानी चाहिए। और अगर आपके पास भी कोई तरीक़ेकार है कि दिल पर नहीं लेना, किस तरह से बातों को दिल पर नहीं लगाना, तो ज़रूर शेयर कर सकते हैं। एक और ट्रैक प्ले करें जो न्यूज़ ब्रेक के बाद लौट कराएंगे। स्टे ट्यून्ड, दिस इज़ FM 101।

0: FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ।
1: 370 ਔਰ 35A के एक तरफा खात्मे के 7 साल मुकम्मल होने के मौके पर 5 अगस्त को यौमे सयाह के तौर पर मनाने की अपील का अयादा किया है। और पाकिस्तान और श्रीलंका की खवातीन टीमों के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच कल तंबोला में खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क की माशी तरक्की के लिए निजी सरमायाकारी का फरोग नागुजीर है। वो आज इस्लामाबाद में सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए प्राइवेट एक्टिविटी के फरोग से मुतालिक इजलास की सदारत कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में सरमायाकारी और छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबार के फरोग के लिए प्राइवेट एक्टिविटी फंड के क्याम के हवाले से लाहेमल जल्द अज जल्द पेश करने की हिदायत की। उन्होंने मुल्क में पब्लिक एक्टिविटी मार्केट और प्राइवेट एक्टिविटी फंड के फरोग के लिए जामी रोड मैप तैयार करके जल्द पेश करने की भी हिदायत की, ताकि मुल्क में सरमायाकारी के लिए फंड दस्तयाब हो और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए राह हमवार हो।
2: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती

मैं संगीता आप सबकी खिदमत में, अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त की आजादी आप सबको मुबारक हो। ये वो दिन है जहां हम लोग आजाद हुए थे, और आजादी बहुत बड़ी नेमत है। ये कदर तो उन लोगों को मालूम होती है जो बाहर बैठे हैं।

All right. जी, वेलकम बैक वंस अगेन रेडियो पाकिस्तान एफ 101 के लाइव ऑन लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं आज हमदा खान को, मेरा आपका साथ रहेगा ठीक जी 8 बजे तक। बिल्कुल लिसनर्स, हम बात करने जा रहे हैं उर्स की तकरीबात के हवाले से। लाहौर शहर को दाता की नगरी कहा जाता है और 18 सफ़र से 20 सफ़र तक जो सालाना उर्स की तकरीबात है उनका आगाज़ हो चुका है। हजूर दाता गंज बख्श अली हजवीरी के उर्स का आगाज़ हो चुका है और आज इस हवाले से दूसरा दिन है और बहुत बड़ी तादाद अकीदत मंदों की जो है उनकी आमद होती है, वो लाहौर आते हैं, अपने नजराने अकीदत पेश करते हैं और आम दिनों में भी हम देखते हैं कि हज़ारों की तादाद में जो है अकीदतमंद आते हैं, लेकिन उर्स के सिलसिले में, उर्स के दिनों में लाखों की तादाद में अकीदतमंद आते हैं और खूबसूरत खूबसूरत जो अशआर हैं वो हमने सुने हैं कि गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूर हुदा ना कसारा पीर कामिल कामिल आरा रहनुमा, और ये खूबसूरत अशआर जो हैं वो आपको पता है कि कब लिखे गए थे, ये 40 दिन का चिल्ला काटने के बाद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती

बिल्कुल जी, इस हवाले से जो है वो कवाली की महफिलें और दूध की सबीलें और इन तीन दिनों में जो है लंगर का वसी इंतज़ाम नज़र आता है, जो कि इस शहर की फिराक दिली की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा सबूत है कि चाहे कोई अमीर हो गरीब हो, दरबार के अंदर जो है वो सब एक सफ में खड़े नज़र आते हैं। और इस खत्ते में इस्लाम की तबलीग के लिए आप इस खत्ते में आए थे और इस्लाम के फ़रोग के लिए आपकी बहुत बहुत बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी तालीमात हैं, आपकी करामात हैं।

0: और जी लाइव कॉल्स का सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं 042-111-0011 पर आप कॉल कर सकते हैं. इसके साथ साथ आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं fizz.com/FM11 लाहौर के पेज पे आपने जाना जी पोस्ट अपडेट है, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ शेयर कर सकते हैं जश्न आज़ादी के हवाले से अपना पैगाम शेयर कर सकते हैं. इस साल आप जश्न आज़ादी पर, यौम आज़ादी पर क्या मोटिव है आपका, क्या गोल है, क्या आप अपने मुल्क के लिए एज एन इंडिविजुअल एज अ सिटीज़न आप क्या रोल प्ले करना चाह रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उस हवाले से भी आप हमारे साथ जिक्र कर सकते हैं. बीएसएन खान हमारे साथ मौजूद थे ऑफ द एयर और बहुत ज़्यादा इनका लगाव है दरख्तों के साथ और इस साल भी इनकी यही कोशिश है कि ये मज़ीद दरख्त लगा सके क्योंकि ये यही बात कर रहे हैं कि धुआँ जो है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे शहर के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन दरख्त जो है वो हमारे शहर के लिए, हमारे माहौल के लिए बहुत अच्छे हैं. बिल्कुल जी, दरख्तों की जो अहमियत है, एक सायादार दरख्त और स्पेशली जो हम बचपन से पढ़ते आते हैं कि जी कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं दरख्त, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, एक बहुत बड़ी नेमत है. और दरख्त उगाना और पौधा लगाना जो है इस साल का हमारा छोटे छोटे अगर हम गोल्स रखें, जिस तरह की हमने बात की कि हम अपने गार्बेज को डिस्पोज करेंगे, हम जो माहौलियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं उस हवाले से अपने मुल्क का साथ देंगे, एज अ सिटीज़न अपने मुल्क के साथ खड़े होंगे और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए और आने वाली नस्लों के लिए, इस मुल्क को और बेहतर बनाने के लिए और संवारने के लिए जो है वो हम अपनी कोशिश करेंगे. बिल्कुल जी, हम बात कर रहे हैं इस टाइम एक और मज़ीद टॉपिक की और मैं चाहती हूँ कि हम उस टॉपिक की तरफ जाएं और हम लाइव कॉल्स का सिलसिला भी शुरू करेंगे. जी पहले कॉलर, लेट्स सी जी कौन होते हैं हमारे साथ और इनसे हम पूछते हैं कि दिल पे लगाना ठीक होता है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम बापू जी, सुपर डुपर शो, ते आप सलामत रहे सदा, हजारों साल जिए.
0: बहुत शुक्रिया जी. कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं आप जी बोधी जट गल कर रहा, रावी दे कंडे तो.
0: अच्छा जी, जट साहब. जट साहब आपकी लाइव कॉल भी मिल गई है.
1: हाँ जी आप जी, तो माशाल्लाह बहुत सोहनिया गल, अल्लाह पाक तुहानू सलामत रखे. आप जी बिलकुल अपने दिल से गल कोई भी नहीं लानी चाहिए.
0: अच्छा जी ठीक है, आप नहीं लेते दिल पे बात.
1: हाँ जी आप जी, इंसान सियाने कहते ने कि गड्डी चंगी तो बुद्धि चंगी हो, इंसान की पूरी लाइफ ऐसी सोहनी लंघ दी, अल्लाह पाक का शुक्र अदा बस करो, तो दिल से बिल्कुल नहीं लो.
0: ठीक है,
1: मुनाफक बंदा होंगे जरा किसी नु गलत नशरियात लाद है, लेकिन ये के अल्लाह पाक तो सलामत रखे, खैर होगी तो दाता पिया के उर्स से आप जी दुद्ध इंशाला तला कल लैके जावे, तो दावत है आप जी अल्लाह के हुक्म ना खालस दुद्ध इंशाला, एक कतरा भी पानी का नहीं होगा, तो सबील करावे.
0: ठीक हो गया जी, इंशाला जी, इंशाला. बहुत शुक्रिया जी जट साहब.
1: तमाम सुनने वाले सलाम आप जी, राजा चौधरी साहब भी सुन रहे हैं, लतीफ मुगल साहब ने, साडे एडमिल ने, शमसी रेडियो क्लब दे कमलनाथ मेरी आपी है, सड़ी आपी, दो हथा सलूट पूरी टीम, पाकिस्तान जिंदाबाद.
0: पाकिस्तान जिंदाबाद जी. बहुत शुक्रिया जट साहब कॉल करने का, ख्याल रखिएगा, हाफिज. और राइट जी, जट साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत शुक्रिया जी आपका कॉल करने का. हम ये बात कर रहे थे कि हर बात दिल पर क्यों लगा लेते हैं, ये हमारी ना एक आदत बन गई है और हमें समटाइम्स लगता है कि जो रवैया हमें देखने को मिल रहा है ना, ये हमारी ही वजह से है कि छोटा जवाब मिल रहा है, एक अजीब सा लहजा है, अलग मूड है. लेकिन हर बदलाव जो है ना वो ज़ाती नहीं होता, लोग अपने अंदर कई लड़ाइयाँ लड़ रहे होते हैं जिनका हमें नहीं पता होता और हमें लग रहा होता है कि शायद हमारी वजह से है, तो हम उस छोटी छोटी बातों को जो है ना वो दिल पर लगा लेते हैं. तो दिल पर लगानी चाहिए क्या हमारी आदत है, हमारी आदत बन चुकी है, क्या आपकी आदत है या नहीं है और इस आदत को कैसे चेंज कर सकते हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं. तो ज़रूर डायल कीजिएगा हमारा नंबर विच इज़ 42-111-0011 और इसके साथ साथ आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं fizz.com/FM11 लाहौर के पेज पर आपने जाना जी पोस्ट अपडेट है, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ जी शेयर भी कर सकते हैं.

दर्द बहुत कभी तू भी मिल, दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल, आज फिर आई ना तू, इंतजार रहा मुस्तकिल।

0: All right, just another caller with us. Let's see, कौन कौन से हमारे साथ मौजूद हैं. Assalamualaikum. Hello. Hello. आई गेस जी कॉल ड्रॉप हो गई है. बिल्कुल जी, आप लोग कॉल कर सकते हैं 0421-111-1 पर.
1: बदलते रूप की तरह शामिल अब तेरे दीवानों में मिलेंगे, ख्वाबों में रहते ख्यालों में उलझे सवालों में, क्या तू पहचानोगे या फिर मेहमानों से कैसे भरोसा करे अब इंसानों पे तू ही.
0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम
2: जी. बिस्मिल्लाह आप ही हम ना था. वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहु. अब्दुल हमीद सुकाबाद से बर्फियाला
0: जी. अब्दुल हमीद साहब कैसे हैं आप?
2: अच्छा, साढ़े जट रहे वक्त खुल गया था मेरे भी. पहले भी कॉल ऑफर भी मिल गई थी, ऑनर भी मिल
0: गई. बस किस्मत है आप लोगों में. क्या कह सकते हैं.
2: माशाल्लाह माशाल्लाह. क्या बात है, बहुत अच्छा प्रोग्राम
0: जी जी. क्या कह रहे
2: थे. बहुत सारिया दुआवा ते क्यों तुम आगे यकीन करो. बड़ा दिल खुश
0: है. बहुत शुक्रिया जी.
2: आवाज अंदाज बोलन का
0: बहुत शुक्रिया.
2: जरा जट साहब है ना बोली जाते रेडियो शक्ति रेडियो क्लब बोलो.
0: ठीक है,
2: बड़ा प्यारा बड़ा अच्छा बंदा बड़ा दलेर है.
0: ठीक है, टॉपिक के हवाले से कुछ कहना चाहते हैं? क्यों दिल पे लगा लेते हैं
2: बातें. जलते नहीं लाने चाहिए.
0: जेड़ी चाहते हो कर लो.
2: देखो टॉपिक मैं गल करूंगा. सब तो पहले तो कश्मीर वास्ते बहुत सारिया दुआवा. अल्लाह पाक उन्होंने खुश रखे, आजाद हो जाए छेती. दूसरी साडे जश्न आजादी, सारे मुबारक मैं कहूंगा. वेखो किन्ना सुकून है, क्या माहौल है.
0: पौधा लगाना भी है और उसको संभालना भी है,
2: सामना भी. दूसरा तीसरी गल हजमेरी का उर्स है. जेड़ा बंदा ए पौधा सफर दसेगा ओनू मैं 1,000 रुपया दवांगा.
0: अच्छा चले आप
2: सफर दसेगा. सफर आया किथे रुके किथे आए जे मेनू दस दे 1,000 रुपया अपना नंबर दे अपना 1,000 रुपया हासिल करे.
0: चले जी, आपको आपको जो है ना वो पूरी एक सुनने का आपको शौक है. मुझे अच्छा लगा कि आप जानना चाहते हैं इस हवाले से.
2: बिल्कुल बिल्कुल.
0: टॉपिक के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे?
2: टॉपिक
0: चले जी. ठीक है, हम दिल पे नहीं लेंगे आपकी इस बात को. ठीक है, ओके.
2: राजा राजा साहब क्या रहा है, मेरी कॉल नहीं मिल रही. कॉल भाई उन्होंने खपन दे.
0: चले जी, आपकी कॉल बंद करते हैं, मैं बाकी कोई बारी देते हैं. ठीक है,
2: जेड़ी दाची कदम भी नहीं सकदी सी चल अर्श दे सवारों दे कम आ गई.
0: माशाल्लाह जी, बड़ी खूबसूरत आवाज आपकी. ख्याल रखिएगा जी. अल्लाह हाफिज़ ऑल राइट. अब्दुल हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, खूबसूरत आवाज इनकी. ऑल राइट, हम बात करें कि आप हर बात को दिल पे क्यों लगा लेते हैं. अगर आप लोग लगाते हैं तो बताएं, और अगर नहीं लगाते किस तरह से अपनी आदत को चेंज किया या ये आदत कभी बनी ही नहीं, तो इस हवाले से भी जरूर बताइएगा. मैं आप लोग के साथ कुछ टिप्स शेयर कर रही थी कि हमें हमेशा लग रहा होता ना कि ये हमारी वजह से है. नहीं, ऐसा नहीं होता. आपकी वजह से नहीं होता. हर चीज से जो एक छोटा सा जवाब देना होता है, एक शॉर्ट रिप्लाई जैसे कहते हैं, या एक अजीब लहजा या एक अलग मूड जो होता है ना, हर चीज़ आपकी वजह से नहीं होती. हर चीज़ को ज़ाती नहीं लेना, हर चीज़ को ज़ाती बना नहीं लेना. और फिर दो फ़र्क होता है हकीकत में और ख्याली कहानी में, जो है वो फ़र्क होता है. हकीकत कहती है कि उन्होंने जवाब नहीं दिया, या जिससे भी आप बात करना चाह रहे थे उन्होंने जवाब नहीं दिया. लेकिन कहानी क्या कहती है? कहानी आपके माइंड में कहीं ना कहीं आपके दिल में ये चीज़ बिठा देती है कि जी मुझे नज़रअंदाज किया जा रहा है, या मैंने कुछ गलत किया है. तो दिमाग जो है ना वो खाली जगहों को जो है ना डर से भर देता है. तो आपने अपने ब्रेन को क्लियर रखना है, और आपने हकीकत की तरफ जो है ना वो ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, अपने आप को बेंट रखना है, ज़्यादा अपने आप को हकीकत वाली साइड पे रखना है.

अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट मैं और जो है वो ऐड करना चाहूँगी, और वो ये है कि हम अक्सर ये बात करते हैं ना, बड़ा कॉमन एक जुमला बन गया हमारा कि हम हर किसी की गुड बुक्स में नहीं हो सकते। इस चीज़ को मैं कहती हूँ, आप जितना जितना जितना ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं ना, उतनी ही ज़िंदगी आसान होती है, और उतना ही हम दिल पर बातों को जो है ना कम लेते हैं कि आप हर किसी की जो है ना मंजूरी की आपको ज़रूरत नहीं है, आप हर किसी की गुड बुक्स में नहीं हो सकते। आप अगर ये कह रहे हैं ना कि हर कोई आपको समझेगा, तो हर कोई आपको नहीं समझेगा, हर कोई आपको शायद पसंद भी नहीं करेगा, और हर कोई जो है वो आपको चूस भी नहीं करेगा। तो इसके लिए जो है ना मेंटली प्रिपेयर होना, ओपन हार्टेडली जो है ना इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही ज़िंदगी है। आप सबकी गुड बुक्स में नहीं हो सकते। आप किसी के लिए बहुत अच्छे हैं, किसी की स्टोरी में बहुत अच्छे हैं, किसी की स्टोरी में आपका रोल कुछ और है, आपका करेक्टर कुछ और है, लेकिन किसी के लिए आपका करेक्टर कुछ और है, उनकी स्टोरी में आपका रोल कुछ और है। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट, और दिल पे ना लें और दिल पे मत लगाएं, और जितना आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि यही ज़िंदगी है, दिस इज़ हाउ लाइफ इज़ गोइंग टू बी, कि आपको हर कोई पसंद नहीं करेगा, आप हर किसी को नहीं समझा सकते, या हर कोई आपको नहीं समझ सकता, और हर कोई आपको चूज़ नहीं करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप हर किसी को चूज़ नहीं करेंगे।

0: हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम। सना की हाल है? ठीक हो?
0: मैं ठीक हूँ जी। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मेरा नाम बशीर अहमद आगा निमको वाला चुंगी अंबर सिद्धू।
0: जी बशीर साहब, कैसे हैं आप?
1: अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। बना बिल्कुल ठीक ठाक जी।
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे बशीर साहब?
1: मैं शफी गुरुपल तरफ
0: जी जी
1: प्रोग्राम सुन लेते हैं, अच्छे अच्छे गाने भी सुन रहे हैं।
0: बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी पसंद करने का।
1: भाई अब्दुल अमीर आए थे बर्फी वाले गला चलिए करके गए ने।
0: ठीक है,
1: अगे उन्होंने तरफ आ गए।
0: ठीक है जी। अच्छा जी, चले ठीक है। मैं बस यही पूछ रही थी कि आप बातों को दिल पर लगा लेते हैं या बस छोड़ देते हैं कि दिल पे नहीं लेनी चाहिए। जी जी
1: अच्छा, बड़े बड़े प्रोग्राम सुनी देने गए, नहीं पता लगता कोई काम जाता
0: चले जी। बहुत अच्छा लगा जी बशीर साहब आपसे बात करके। ख्याल रखिएगा, अल्लाह
1: हाफिज़।
0: और राइट जी, बशीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने एक कॉल की ट्राई की और वो कॉल जो है वो लग गई, कॉल मिल गई इनकी। और राइट जी, इसके साथ साथ कुछ कमेंट्स आप लोग शामिल कर लेते हैं। facebook.com/fmlahore के पेज पे आपने जो कमेंट्स किए हैं जी उनको शामिल कर लेते हैं। रजा चौधरी हमारे साथ मौजूद है जी, सलाम कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान अनवर गुजर हमारे साथ मौजूद है जी, क्या कहते हैं, गुड इवनिंग कहते हैं। और जी अब्दुल्ला वाला खेल हमारे साथ मौजूद है, सलाम कहते हैं फ्रॉम क्वेटा। वेलकम टू द शो, वेलकम टू द शो जनाब।

0: right, it's 7:28 PM on the dial, or let's try to take another call. Let's see, कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक. कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: लाहौर से
0: जी.
1: पिछले मंडे आपसे बात हुई.
0: अच्छा जी, और नाम बताइएगा प्लीज अपना.
1: खुर्रम बात कर रहा हूँ लाहौर से.
0: जी खुर्रम, कैसे हैं आप?
1: जी अल्लाह का शुक्र, आप बताएं ठीक ठाक हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. मौसम एंजॉय कर रहे हैं?
1: जी मौसम एंजॉय कर रहे हैं और रिंग रोड पे ड्राइव कर रहे हैं.
0: अच्छा, रिंग रोड पे फिर आप खैरियत से जो है ना सेफ ड्राइव करें. ठीक है
1: जी, नॉर्मल स्पीड में जा रहा हूँ.
0: ठीक है जी, क्या कहना चाहेंगे?
1: मैंने असल में अभी ट्यून इन किया है तो मैं आपका टॉपिक नहीं सुन सका कि टॉपिक क्या चल रहा है.
0: अच्छा चले, मैं टॉपिक बता देती हूँ आपको. हम बात करें कि आप क्या हर बात को दिल पे ले लेते हैं, दिल पे लगा लेते हैं बातों को, कैसी आदत है?
1: नहीं अब ऐसे क्या करना है दिल पे लेके, अपने आप को खराब करने वाली बात है.
0: बात तो ठीक है. तो इस आदत को कैसे चेंज किया जाए, कोई एक आप बताएं कोई तरीके का.
1: लोगों की बातें दिल पे लेके तो अपनी जिंदगी खराब होती है, बस इस चीज को अंडरस्टैंड करें.
0: ठीक है.
1: हेलो.
0: जी जी, आवाज आ रही है आपकी.
1: जी जी यार, मैंने कहा लोगों की बातें दिल पे लेके इंसान अपना नुकसान करता है, किसी का तो कुछ नहीं आता, लोग बातें करके निकल जाते हैं.
0: ठीक है, बिल्कुल ठीक है.
1: ऐसा क्या है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, तो इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए.
0: ठीक है, तो आपकी आदत थी या शुरू से ही नहीं रही या आपने चेंज करने की कोशिश की इसको?
1: आदत बार-बार कुछ बातें फील होती नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश होती है कि ना ही फील किया जाए, बेहतर है.
0: ठीक है,
1: वही वो लास्ट टॉपिक था ना आपका कि एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल.
0: जी जी जी जी बिल्कुल ठीक है जी.
1: खराब करने वाली बात है क्योंकि दुनिया ने तो कुछ नहीं देना, जो कि इंसान ने करना खुद ही करना अपने लिए.
0: बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है. तो इसका मतलब आप इस बारे में जो है ना वो पुख्ता है कि बस दिल पे नहीं लगानी.
1: जी जी, बैंकर बेचारा वैसे ही पक्का हो चुका.
0: ठीक है जी, अच्छा ये भी बड़ा फर्क पड़ता है कि आपकी नौकरी कहाँ पे, आप क्या काम करते हैं, इस चीज का बड़ा फर्क पड़ता है आप पे और आप बड़ा कुछ सीखते हैं.
1: बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे
0: ही. चले जी, अच्छी बात है.
1: आप के वेदर एंजॉय कर रही हैं आप?
0: जी जी बिल्कुल, वेदर एंजॉय कर रही हूँ इस टाइम, शो एंजॉय कर रही हूँ. और बाकी का वेदर मैं शो के बाद एंजॉय करूँगी. ठीक है जी,
1: ख्याल रखें,
0: बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज. ऑल राइट जी, खुर्रम ऐसा मौजूद है. और ऐसा भी होता है कि हम जिंदगी, जिंदगी सीखने का नाम है ना, हम हर स्टेज पे सीखते हैं. तो बिल्कुल ऐसा भी होता है कि हम जो है समटाइम्स हमारी जॉब नेचर जो है वो बहुत अच्छा हमें सिखा रही होती है, हमारी जो जॉब्स होती हैं वो हमें बहुत कुछ अच्छा सिखा रही होती है कि किस तरह से हमारी हैबिट्स को भी एक्चुअली चेंज कर रही होती है. पहले शायद आप सेंसिटिव होंगे अपने स्टूडेंट लाइफ में, आप चीज़ों को बातों को दिल पर लेते होंगे, लेकिन जब आप जैसे ही आप आते हैं ना कमाने की तरफ, चाहे वो बिजनेस है चाहे आप कोई जॉब कर रहे हैं, तो बहुत कुछ आप सीखते हैं. और फिर आपको ऐसे ऐसे समझ आती है कि नहीं, अगर हर बात दिल पे लगाई ना तो ज़िंदगी नहीं गुजरेगी, और अगर हर बात को दिल पे ऐसे ही लेते रहे तो वाकई वही बात है खुर्रम वाली कि फिर ज़िंदगी तो नहीं गुजरेगी ना, तो फिर लोगों का तो कुछ नहीं जाएगा, आप अपने आप को ही ख़राब करेंगे. ऑलराइट जी, अनदर ट्रैक, इस ट्रैक को एंजॉय करते जी, लौट कर आते हैं और खूबसूरत सी कॉल्स लेते हैं, बातें करते हैं और फेसबुक के कमेंट शामिल करते हैं. स्टे ट्यून्ड विद अस.

मैं संगीता आप सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त की आज़ादी आप सबको मुबारक हो। ये वो दिन है जहां आप लोग आज़ाद हुए थे और आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। ये कदर तो उन लोगों को मालूम होती है जो बाहर बैठे हुए हैं।

Right. Welcome back once again, Radio Pakistan FM 101 के लाइव ऑन लाहौर स्टूडियो से. जी हाँ, लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं आज हमदा खान को, मेरा और आपका साथ रहेगा. ठीक जी, 8 बजे तक, इट्स 7:39 PM ऑन द डायल. बिल्कुल जी, आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों के गोल्स, आप लोगों के मोटिव्स जो है वो हम शामिल कर रहे हैं जश्न आज़ादी के हवाले से, यौम आज़ादी के हवाले से. क्या करना चाहते हैं अपने मुल्क के लिए, ज़रूर आप लोग अपना मैसेज जो है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. 0422111 पर लाइव कॉल्स का सिलसिला जारी है. और इसके साथ साथ आप मुझे बता सकते हैं कि हम दिल पर क्यों लगा लेते हैं छोटी छोटी बातों को. और अगर ये आदत आप में भी है तो आपने कैसे इस आदत को चेंज किया, और अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो मेरे पास कुछ टिप्स हैं. कुछ तो है, कुछ मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं भी वैसे सीख रही होती साथ साथ. यकीन माने, मैं जो पढ़ के आती हूँ ना, आप लोगों को बताते बताते ना मैं अपने पे भी इम्प्लीमेंट करती हूँ.

0: RJ, and let's take another caller. Hello, assalamu alaikum. बहुत शुक्रिया जी. कौन बात कर रहे हैं, नाम तो बताएं.
1: जी मैं रहमान बात कर रहा हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम शो सुना है.
0: बहुत शुक्रिया,
1: मैं कॉल कर रहा था.
0: ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का.
1: तो शो इज वेरी गुड, तो प्लीज आपकी एक मेहरबानी होगी, एक रिक्वेस्ट है.
0: जी जी.
1: वो ये कि एक सॉन्ग पे एक आदमी चिट्टे कबूतर की आंख का दी.
0: अच्छा जी, ठीक हो गया जी, ठीक है. और कुछ कहना चाहेंगे?
1: बस यही तो अभी एक है इनके, मतलब के छोटी छोटी बातों को नहीं लगाना चाहिए. छोटी बात इंसान दिल पे नहीं लगाता, मेरी ये आदत नहीं है, लेकिन मैं बात जो है ना वे मशीन कर लेता हूँ.
0: अच्छा.
1: कि किसी टाइम पे ये मेरे साथ ये बात की थी या ये बात मेरे साथ हुई हुई है.
0: अच्छा, तो उसका क्या फायदा होता है, उसका नुकसान नहीं होता?
1: नुकसान क्या होता है, बस आपने वे मशीन कर देनी है, दिल पे नहीं मतलब लगानी थी.
0: अच्छा.
1: ये मैं मतलब रख लेनी है की किसी ने बात की थी.
0: नहीं, जहन में क्यों रखनी है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ ना, क्या उसका फायदा होता है?
1: वो फिर फायदा तो वैसे नहीं होता, फिर कभी ना कभी इंसान पे टाइम आ ही जाता है, वो जहन से बाहर निकाल के उस बंदे को बता देता है.
0: मतलब मैं
1: वो नहीं, वो फिर ना असल में उल्टी उसके कान में से पड़ जाती है.
0: अच्छा अच्छा, बात लगाने के काम आ जाती है.
1: हाँ जी, ये बात
0: टाइम आने पे बात लगाने पे काम आ जाती है, इसलिए जहन में जरूर रखनी है.
1: हाँ जी, माशाल्लाह आपकी आवाज भी बहुत प्यारी है, तो प्लीज आपकी मेहरबानी होगी, सॉन्ग आपने.
0: चले जी, बिल्कुल जी, कोशिश करेंगे जी.
1: जी जी, आपका शो सुना, फर्स्ट मरते मेरे के आप मतलब
0: की. बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा अपना.
1: ठीक है, ओके जी, अल्लाह
0: हाफिज़. जी जी,
1: कोशिश ना कीजिएगा प्लीज, आपकी मेहरबानी.
0: ठीक है जी, ठीक है जी, टाइम शॉर्ट है, बस कोशिश करते. ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़. ऑलराइट जी, ये कह रहे हैं जी दिल पे नहीं रखनी लेकिन दिमाग में जो है ना वो जरूर रखनी. अच्छा, होता है, ये भी रियलिटी है, मैं इसको डिनाई तो नहीं करूंगी. ऐसा होता है कि हम जो है ना दिल से तो कहते हैं ना कि दिल पे नहीं लेनी, लेकिन दिमाग में हम रखते हैं कि कभी ना कभी मौका मिलेगा ना गल लानी. कभी ना कभी मौका मिलेगा, हमने बात जरूर लगानी है, हमने बताना है कि भाई उस टाइम पे आपने मुझे ये कहा था और ये चीज मुझे बुरी लगी थी, या फिर हमने मौका ढूंढना कि भाई अब हमें इनको भी कुछ बुरा लगे सही है और हम जो है ना उस मोमेंट पे ये बात कर दे किसी तरह से. ऑलराइट जी, एक और कॉलर है हमारे साथ, लेट्स सी जी कौन कहाँ से होते हैं हमारे साथ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: जी मैडम, क्या हाल है, ठीक है, खैरियत से?
0: जी जी,
2: आफ्टर लॉन्ग टाइम. हमदोस कुमार मुगल फ्रॉम शाहजहां.
0: जी मुगल साहब, कैसे हैं आप?
2: जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमदोस कुमार.
0: आपकी आवाज थोड़ी सी जो है ना डिस्टॉर्ट हो रही है,
2: शायद नेटवर्क मसला होगा.
0: जी जी, नेटवर्क का इशू, कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा ऊंचे बोलेगा, अगर आवाज हमें क्लियर रही तो हम पे कंटिन्यू रखेंगे.
2: चले, नहीं क्लियर आ रही तो कोई बात नहीं.
0: जी जी,
2: हाँ अगर क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो फिर सही.
0: चले, आप फिर दोबारा ट्राई कर लेते हैं कॉल करने की. हेलो, आई गेस जी कॉल ड्रॉप हो गई है डिस्टॉर्शन की वजह से. कोई बात नहीं जी, आप दोबारा कॉल ट्राई कर सकते हैं, डायल कर सकते हैं नंबर विच इज़ 4221000011. और हम बात कर रहे थे कि बात जो है ना वो हम दिल पे लगा लेते हैं, तो उस पर उसके हवाले से मैंने भी कहा कि मैं आप लोगों को कुछ ना चीज़ें बताऊँगी. और वो एक उसमें पॉइंट जो मैंने ऐड किया, और वो ये है कि अपनी पहचान जो है ना वो आपने कभी भी दूसरों की राय पर नहीं बनानी. कि मतलब अगर एक तबसरा है ना आपके बारे में हो रहा है, या कोई भी ऐसा मतलब कोई भी ऐसी डिस्कशन हो रही है, तो वो आपका पूरा दिन ख़राब कर सकती है. उसमें ऐसा है कि अगर आपने किसी भी अननोन पर्सन को ना, अनजान लोगों को अगर आपने इतनी वैल्यू दे दी है ना कि वो इतने ताकतवर हो गए हैं, और उनका एक छोटा सा तबसरा जो है ना वो आपका पूरा दिन ख़राब कर सकता है, तो आपने कभी भी किसी को अलाउ नहीं करना. अनटिल और अनलेस जो आपके क्लोज वंस हैं, ठीक है, वो आपको बात भी करें, आपको मशवरा भी दें, आपकी खैर ख्वाबी हों, लेकिन एक स्ट्रेंजर को, एक अननोन पर्सन को, या जिसके साथ आपकी बहुत कम मुलाकात है, या जिसके साथ आपकी कोई इतनी बॉन्डिंग नहीं है, उसको कभी भी आपने मौका नहीं देना कि वो आप पे कोई तबसरा करें, और वो तबसरा ऐसा हो के जिसकी वजह से आपका सारा दिन जो है ना वो ख़राब हो जाए. ठीक है, अच्छा एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमें ना उस टाइम पे चीज़ें बहुत बड़ी लग रही होती हैं, जिस मोमेंट वो चीज़ होती है, वो बात कही जाती है, वो तबसरा होता है हमारे बारे में, या हमें लगता है कि हमें इग्नोर किया जा रहा है, या कॉल नहीं उठाई, या बात नहीं की, या जवाब नहीं दिया, इग्नोर किया, या लहजा ऐसा था, या शॉर्ट रिप्लाई था, कुछ भी था जी, कुछ भी था, लेकिन आपने एक चीज़ देखनी है, आपने खुद से एक सवाल करना है, और वो ये है कि ये जो चीज़ अभी इतनी मैटर कर रही है ना, इतना इस चीज़ ने हिला के रख दिया है, या इस चीज़ से इतनी तकलीफ़ हो रही है, क्या ये एक महीने बाद भी इतनी ही अहम होगी? चले एक महीना भी मैंने ज़्यादा कह दिया है, आप एक हफ्ते बाद भी अगर अपने आप को एनालिसिस करके देखें इस चीज़ का, कि क्या ये बात तब भी मेरे लिए इतनी अहम होगी? हो सकता है एक दिन के बाद आपके लिए अहम ना हो सकता है 4 घंटे बाद आपके लिए अहम ना हो सकता है 1 घंटे बाद सिचुएशन चेंज हो जाए, आपके लिए नहीं इतनी अहम होगी। तो ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं ना, वो उस वक्त में बड़ी लग रही होती हैं, और वक्त जो है ना, वो जज्बाती तूफ़ान जिसे कहते हैं ना, उसको छोटा कर देता है। तो कभी कभी जो है ना, आपने ये देखना है कि ये जो अभी जज्बाती तूफ़ान है ना, क्या ये सर्टेन टाइम के बाद भी ऐसा ही रहेगा? क्या ये वाकई जो है इतना ही मैटर करता है? तो जब आप इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लेंगे ना अपने लिए, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आपको पता होगा कि जी नहीं, ये इतना मैटर ही नहीं करता, और जिस चीज़ की आप टेंशन ले रहे हैं, या जिस चीज़ के लिए आप इतना इतना इतना इतना आपने फील किया है ना, वो चीज़ मैटर ही नहीं करती।

0: और अजीत 7:48 PM ऑन द डायल, और हम बात कर रहे थे कि क्या हर बात को दिल पे लगा लेना ठीक होता है, ये दिल पे लगाने वाली आदतें जो है ना हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इसी पे हम बात करें। एक और कॉलर है हमारे साथ, लेट सी जी 0422111001 पर कौन है जी हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से बात करें?
1: नाम ही काफी है मुझे, रमजान अनवर गुजर कहते हैं, मॉडल टाउन लाहौर से। अर्ज किया है काश वो कहे मुझसे, काश वो कहे मुझसे कि मुझे आपसे डैश और काल मुनकता हो जाए। बहुत सी दुआओं के साथ आवाज़े पाकिस्तान की खूबसूरत आवाज, रेडियो पाकिस्तान हिट एफ एम 101 की जबरदस्त आवाज, मैम हमना खां की को सुनने वाली अजीम समातों को रमजान गुजर, आदाब तस्लीमात, गुड इवनिंग पाकिस्तान। मेरी जान कहता है वन वन के सब रंग, दी वन एंड ओनली सुपर हिट आरजे मैम हमना खा के संग। मिजाजी ग्रामी कैसे हैं आपके मैम हमना खा?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना,
1: बेशक की तरह आपका बड़ा बंडल ऑफ थैंक, आप पानी में आई, बारिश के पानी में आई शो करने के लिए, लेकिन एक शो आप करती हैं वीक में और एक शो नहीं आती, जिसकी हमें बहुत हम बहुत थैंटी हैं।
0: ठीक है जी, बड़ा आप मैंने पैटर्न नोट किया है।
1: जिसका मैं बेताबी और बेचैनी से इंतजार करता हूँ। आज बहुत सेंटी था आपका बंडल होता है, आप बारिश के मौसम में हमारे लिए सुनने वालों के लिए तशरीफ आवरी आपने की,
0: आपका
1: सोचा था आज हजूर फैज़े आलम जाऊंगा, सोचा नहीं था यकीनन आज जाना था और हाजरी यकीनी थी, बारिश ने मथा ला लिया, बारिश आ गई और मैंने लंगर भी करना था और आपके लिए भी लेके आना था। मुझे पता है कि मैम ने सारी सारा दिन बहुत मसरूफियत से गुजारा और शाम को भूख लगी होगी, तो मैं और कुछ नहीं दे सकता, मैं दसों पाव का लंगर इकट्ठा करके ना।
0: अरे वाह जी वाह, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, ये एहसास और ये ख्याल बहुत अच्छी बात है। टॉपिक के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे?
1: टॉपिक के हवाले से यही कहना चाहूंगा कि दिल तो बच्चा है।
0: अच्छा।
1: दिल तो बच्चा है, थोड़ा कच्चा है और हर ये लेता नहीं है, इस पर बहुत बड़ी आ जाती है, मासूम सा दिल है, उस पर ही हर आफत हर मुसीबत आ जाती है।
0: नहीं तो जिंदगी में आपने सीखा क्या फिर? आपने जिंदगी में सीखा नहीं?
1: सॉरी,
0: मैंने कहा जिंदगी में आपने सीखा नहीं कि दिल पे कैसे नहीं लेना और किस तरह से चीजों को जो है ना हैंडल करना है?
1: रोज ही सीखता हूँ।
0: देखा,
1: रोज ही बोल,
0: देखा, जिंदगी रोज सिखाती है।
1: लेकिन क्या करें, वो तो बड़ी आ जाती है मुसीबत।
0: चले, कोई बात नहीं,
1: बस ऐसा ही है, यकीन करें आप आई बहार आई, 101 की आप रौनक है, तो आप आती जाती रहा करें, हम आपका इंतजार करते हैं तमाम लिस्टनर और आपके लिए दुआ गो होते हैं कि अल्लाह पाक आपको हंसता मुस्कुराता हुआ अपनी फैमिली में शादोबाद रखे, और आपके लिए बहुत सारी दुआएं और आपकी विनिंग टीम के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक आपका और आपकी विनिंग टीम का इकबाल बुलंद करे, पाकिस्तान पाइंदाबाद।
0: बहुत शुक्रिया जी। ऑलराइट जी, रमजान अनवर गुजर मेरे साथ मौजूद थे और बिल्कुल जी, इन्होंने कहा कि मैं रोज़ सीखता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है, हम सब रोज़ सीखते हैं, हम रोज़ बहुत सारी बातें हैं जो फील होती हैं, लेकिन हम रोज़ सीखते हैं कि किस तरह से अब इन बातों को जो है वो दिल से ख़त्म किया जाए। और जैसे हमारे अभी एक कॉलर ने बात की थी कि वो दिमाग में रखते हैं, तो मैं कहती हूँ कि दिमाग में भी नहीं रखना चाहिए, कुछ ज़हनी सुकून जो है ना, सुकून जो है ना, जिसे कहते हैं ना सुकून सबसे बढ़ के है, सुकून खुद को साबित करने से भी ना, हम समटाइम्स एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं और खुद को समझाने की भी कोशिश करते हैं, खुद को भी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर चीज़ से बढ़कर जो है ना वो सुकून है, तो खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है, हर लहजे का तज्जिया ज़रूरी नहीं है, हर राय का जवाब ज़रूरी नहीं है, ठीक है, अपनी जज्बाती एनर्जी को जो है वो सेफ रखें, उसकी हिफाजत करें और कोशिश करें कि जितना आप हकीकत में रह सकते हैं उतना हकीकत में रहें, जितना आप उसको स्टोरी में क्रिएट करेंगे सोचेंगे उतना ही वो जो है आपको फील होगी, और जितना आप इस चीज़ में क्लैरिटी रहेंगे ना कि क्या ये चीज़ अब से इतने घंटे बाद, अब से एक दिन बाद, अब से एक हफ्ते बाद, अब से एक महीने बाद, क्या ये चीज़ मेरे लिए ऐसे ही मैटर करेगी, तो आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा कि आपने इसको कितना कितना कितना अपने दिल पर लेना है। और اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ نے کبھی بھی کسی بھی انجان کو جو ہے وہ اتنی پاور نہیں دینی کہ وہ آپ پر آ کر جو ہے وہ کمنٹ کریں اور وہ جو ہے وہ آپ کو کہہ سکیں کچھ بھی ایسا جس کی وجہ سے آپ کا دن خراب ہو.

0: आर जी ट्राई करते हैं, लास्ट कॉलर कौन होते हैं हमारे साथ, और टाइम बिल्कुल शॉर्ट है जी, 0-4-111-000-1 पर लेट्स सी हु इज द लास्ट कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं जी?
1: क्या है भाई, खैरियत है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: बाबर अली बोल रहा हूँ, फ्रॉम मलकन स्वात।
0: अरे वाह, सवात। कैसा मौसम है सवात का
1: जी?
0: सवात का कैसा मौसम है?
1: आपकी आवाज सही नहीं आ रही।
0: मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही? अब आ रही है आपको आवाज?
1: हाँ, अब आवाज थोड़ी थोड़ी
0: ठीक है जी। मैं पूछ रही हूँ कि सवात का मौसम कैसा है?
1: सवात का मौसम तो बहुत ठंडा है जी।
0: बहुत ठंडा है? अच्छा ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, आप मौसम एंजॉय कर रहे हैं इसका मतलब सवात में?
1: हाँ जी बिल्कुल, यहाँ का मौसम भी अच्छा है। यहाँ का जो असल में इधर पानी क्रैन नहीं होता ना, जब जितने भी बारिश हो जाए ना तो पानी मतलब एक जमा नहीं होता, पानी सीधा जा रहा है, रास्ता निकल।
0: ठीक है, सवात बहुत खूबसूरत है। आपको पता है लास्ट ईयर में सवात आई थी और मुझे इतना सवात देखने का मौका नहीं मिला। कलाम मैंने देखा और मैं झीलों पर भी गई, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए आई हूँ। मुझे लगता है सवात घूमने के लिए ना आपको भरपूर टाइम चाहिए।
1: ओए हाय, मुझे नहीं पता था। जो ये अक्सर इधर से ये आपके ये पंजाब की तरफ से लोग बहुत आते हैं ना शेयर करने।
0: जी जी जी जी।
1: लेकिन मैं तो अक्सर जब कोई आते तो हमारे मेहमान बन जाते, बहुत से लोग हमारे मेहमान बनते हैं।
0: अरे वाह, मैंने सुना है सवात वाले जो है ना बड़े मेहमान नवाज लोग होते हैं, बड़े खुश दिल होते हैं और बहुत मेहमान नवाज होते हैं
1: जी।
0: मैंने कहा सवात के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं।
1: हाँ जी बिल्कुल, मेहमान नवाजी तो हमारी फर्ज है जी, ये तो लाजमी, जब बंदा मेहमान होता है तो सबसे बड़ी बात तो इंसानियत।
0: बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। क्या कहना चाहेंगे बाबर साहब?
1: बस मैं ये सुनता हूँ बहुत ना।
0: अच्छा सुनते हैं आप? चले जी, बहुत शुक्रिया।
1: ये मैं बहुत ज्यादा सुनता हूँ, अक्सर सुनता हूँ, बस ज्यादा कॉल कभी नहीं कर रहा हूँ, कभी कभी कर रहा हूँ लेकिन अक्सर नहीं कर रहा हूँ।
0: ठीक है,
1: अक्सर सुनता हूँ बस।
0: ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगे? टाइम बड़ा शॉर्ट है।
1: बस मेरे सब लोगों को सबको दुआ सलाम मेरी तरफ से, बस सारे जितने भी सुन रहे हैं सबको दुआ सलाम मेरी तरफ से।
0: चले जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। और जी, बाबर अली हमारे साथ मौजूद थे सवात से, और आपको पता है कि सवात जो है ना बहुत बहुत बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। लेकिन अभी अगर आप प्लान कर रहे हैं सवात जाने का, तो अगेन मैं वही बात करूंगी कि आपने ज़रूर ज़रूर वेदर चेक करके जाना है। आपने किसी ऐसे इंसान के साथ जाना है, कोई ऐसे ड्राइवर हो आपके साथ जो उन रास्तों से वाकिफ हो। और जो हम बात कर रहे थे कि हर बात को दिल पे लगा लेना चाहिए, तो हर बात को दिल पे नहीं लगाना चाहिए, इवन दिमाग में भी नहीं रखना चाहिए। अपने जहनी सुकून को और अपने सुकून को जो प्रायोरिटी देनी चाहिए, हर चीज़ को साबित करने की ज़रूरत नहीं होती, हर चीज़ को अपने लिए एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं होती। इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों से हम इस आदत को बदल सकते हैं। कोशिश करते हैं, मैं और आप हम सब मिलकर कोशिश करते हैं जी कि हम इस आदत को चेंज कर सकें। और इसके साथ साथ जो हमने बात की अपने मुल्क के लिए कुछ करने की, तो इस अहद को भी जो है वो पूरा करते हैं। कोशिश करते हैं कि अपने मुल्क के लिए कोई एक छोटे छोटे छोटे छोटे स्टेप्स जो है ना वो हम ले सकें, और जिससे हमारा मुल्क जो है वो बेहतर बन सके, हमारा मुल्क संवर सके, और हम अपने मुल्क के लिए इस यौम आज़ादी पे कुछ कर सके। और जी, इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने आज हमना खान को दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। सी यू ऑन नेक्स्ट मंडे इंशाल्लाह जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।

मैं संगीता आप सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त की आज़ादी आप सबको मुबारक हो। ये वो दिन है जहाँ हम आज़ाद हुए थे और आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। ये कदर तो उन लोगों को मालूम होती है जो बाहर बैठे हुए हैं।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: कहते हैं कश्मीर है जन्नत, और जन्नत किसी काफिर को ना मिली है ना मिलेगी।
1: There's music and then there's magic. One above FM 101. There's music and then there's magic. One above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: 9 p.m. Pakistan's Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Zahra Sikandar. First, the headlines. Prime Minister has directed authorities concerned to ensure completion of all stages of privatization program within stipulated timelines. Deputy Prime Minister and Iranian Foreign Minister have telephonically exchanged views on regional and international developments. Information Minister says PMLN has secured simple majority in Azad Jammu and Kashmir Legislative Assembly elections.
1: तूफानी बारिश में निकासी आब मुयस्सर ना होने की सूरत में शहरों में सैलाब आने का खतरा रहता है। अवामुल नास और मुतलका जिले इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि बारिशों से पहले पानी की उम्दा निकासी, सफाई और सेवरेज का अच्छा इंतजाम कर लें। कूड़ा करकट नालों में फेंकने से गुरेज करें। सैलाब के दौरान बिजली के खम्भों और कच्ची दीवारों से दूर रहें। बिजली और गैस के मेन कनेक्शन मुनक़ता कर दें। कीमती साजो सामान को अलहदा किसी ऊपरी जगह पर मुंतकिल कर दें। अशिया खुर्दोनोश, साफ पीने का पानी, मोबाइल फोन और रेडियो का इंतजाम रखें। किसी भी हंगामी सूरतेहाल में रेस्क्यू महकमात से रजू करें और मुतलका नंबर्स पर राब्ता करें। आफात से महफूज पाकिस्तान, हम सब की मंजिल, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी।
2: दिस इज FM 101।
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, अबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101।
4: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू एफएम 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

0: पाकिस्तान के नामवर गिटारिस्ट सजाद ताफू कश्मीर के हवाले से अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहते हैं,
1: कश्मीर है जो हमारी शाहरग है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इतने सालों से जो डिस्प्यूट है, ये मामलात, मैं चाहता हूँ कि सारे पाकिस्तान के जितने लोग हैं, पूरी दुनिया में जितने पाकिस्तानी हैं, वो कश्मीर के लिए दुआ भी करें। और वहाँ जो जुल्म हो रहा है, कर्फ्यू लगा है, जो कत्ल किया जा रहा है और माँ बहनों की इज्जत उछाली जा रही है, और मैं चाहता हूँ कि ये पैगाम पूरी दुनिया में जाए और कश्मीरियों के लिए नहीं सुबह का पैगाम आए।

मैं संगीता आप सबकी खिदमत में, अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त की आज़ादी आप सबको मुबारक हो। ये वो दिन है जहां हम लोग आज़ाद हुए थे, और आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। ये कदर तो उन लोगों को मालूम होती है जो बाहर बैठे हुए हैं।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल लार्ज बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: देयर्स म्यूजिक एंड देन देयर्स मैजिक वन अबाव FM 101।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल जहन्नुम बारास्ता जन्नत बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic.

0: कश्मीर है जन्नत, और जन्नत किसी काफिर को ना मिली है ना मिलेगी।
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

And then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: पाकिस्तान के मशहूर शायर, अदीब और ड्रामा राइटर अमजद इस्लाम अमजद कश्मीर के हवाले से अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहते हैं,
1: तारीख आदम में इंसानियत ने बहुत चैलेंज भी देखे हैं, बहुत अजाब भी सहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त मकबूजा कश्मीर पर जिस तरह से एक खास नजरिए के तहत जुर्म ढाए जा रहे हैं और इंसानी हकूक को पामाल किया जा रहा है, ये इस जदीद और तरक्की याफ्ता दुनिया के लिए एक लम्हा फिक्रिया है और तमाम इंसान दोस्तों को, दुनिया भर के तमाम इंसान दोस्तों को इस वक्त मिलकर मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए हम मदद के लिए, हमायत के लिए एक जगह इकट्ठा होना चाहिए।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर और आप सबको पता है कि जश्न आजादी हम भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी आन है, पाकिस्तान है तो हमारी शान है। पाकिस्तान

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

नजम से गजल बन गई, तू रोज ही बदलती रही, असर से दखल बन गई, शिकायतें बढ़ती रही, मोहब्बत ये जंग बन गई, जिंदगी चलती रही, तुझको खबर ही नहीं, कोई डरी नहीं तो लड़ भी नहीं, बात आगे बढ़ती नहीं, तमाशे खत्म कर अभी, वो गलतियां गिनती गई, नफरतें बढ़ती गई, लोगों की सड़ती रही, शराब मुझे चढ़ती नहीं, मेरे आगे कभी किसी की भी चलती नहीं, शामें

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: का भला नाम डुबोया, हटो जाओ मोहब्बत का भला नाम डुबोया।
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

Assalamualaikum, Assalamualaikum, Pakistan. क्या हाल चाल है आपके? आई होप कि आप सब ठीक ठाक फिट वाले बनोगे. ऑलराइट जी, मैं हूं आपके साथ हसनैन रज़ा ऑल द वे फ्रॉम हिट आर्ट रेडियो स्टेशन ऑफ पाकिस्तान, दैट इज एफएम 101. और आप इस सुन रहे हैं 101 इंटरनेशनल सामा स्टूडियो से. ऑलराइट जी, सबसे पहले हमारी आवाज सुनी जा रही है इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पिशावर, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, सियालकोट, क्वेटा, हैदराबाद, कराची और पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान दुबई. इंटरनेशनली आप हमें इस टाइम सुन रहे हो radio.joy.pk पर. इसके अलावा जी बहुत सारे दोस्त इस टाइम हमें मोबाइल इंटरनेट पर सुन रहे हैं radio.joy.pk/mobile पर. और अगर तो आप अपने रेडियो सेट से मोबाइल सेट पे सुन रहे हो, या तो रात के इस टाइम आप ड्राइव कर रहे हो और साथ में ट्यून किया हुआ प्योर पाकिस्तानी चैनल FM 101 इंटरनेशनल को, तो जी आप तमाम दोस्तों को आज के प्रोग्राम में वेलकम करते हैं. ओके जी, डेट चेंज हो चुकी है, 4th of August 2026 ट्यूसडे स्टार्ट हो चुका है. हमेशा की तरह बहुत सारी दुआएं आपके लिए कि ट्यूसडे का सारा दिन आपका बहुत अच्छा गुजरे. और उम्मीद करते हैं कि वीक का साथ जान के मंडे आपका बहुत अच्छा गुजरा जैसे कि आपने सोचा होगा. और अगर नहीं भी अच्छा गुजरा तो कोई बात नहीं, आने वाले दिनों को अच्छा बनाओ, क्योंकि अगर एक दिन अच्छा नहीं गुजरता तो इसका हर किस मतलब ये नहीं है कि आने वाले दिन या पूरा हफ्ता जो है आपका अच्छा नहीं गुजरेगा. सब डिपेंड करता है आपके माइंड सेट के ऊपर. पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव होगा. सो अच्छा है ना पॉजिटिव सोच के लाइफ को अच्छा बना लें.

एनीवेज जी और बताइए कि पूरा हफ्ता पिछला आपका कैसा गुजरा। आई होप सो कि पूरा हफ्ता आपका अच्छा गुजरा होगा और काफी आपने एंजॉय किया होगा, आपने काम किए होंगे, घूमे फिरे होंगे और साथ खाना पीना तो हम छोड़ नहीं सकते, वो तो वो भी आपने लाजमी किया होगा। मतलब कि बाहर की मैं बात करूं, घर तो आप खाते ही हो, एक वाही चीज खाना पीना जो है जिसके बगैर हम रह नहीं सकते हैं और जिसके मतलब कि जिसके पीछे जो है हम आप कह लो काफी एफर्ट भी करते हैं समटाइम्स खाना बनाने के लिए, और जब किसी से खाना खाना होता है उसके लिए भी हमें बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। सो जी मौसम जो है कभी अच्छा होता है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी बारिश वाला मौसम हो जाता है, ऐसे ही चल रहा है पिछले एक दो हफ्ते से। और लेकिन अच्छी बात है यार, मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है और दिन जो है वो जरा अच्छा गुजरता है। तो एक दो दिन गर्मी होती है, फिर एक दो दिन मौसम बेहतर हो जाता है। अभी भी बाहर मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा है, सो बाहर मौसम अच्छा हो तो दिल का मौसम भी ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है और होना चाहिए भी। और फिर इसके अलावा आपको बता रहे कि मंडे की रात जो होती है और मंडे को वैसी हल्की फुल्की बारिश जो है वो हो जाती है, तो दिन के टाइम भी बारिश जो है वो कुछ देर के लिए, लेकिन इतनी तेज हुई कि मजा आ गया। उसके बाद सारा दिन जो है वो बारिश का कोई नामो निशान नहीं था।

सो कैजी, आप लोग बताइए क्या चल रहा है नया लाइफ में, और लाइफ में नया होना बहुत जरूरी होता है, और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि एक जैसी लाइफ जो है वो नहीं गुजरनी चाहिए, लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो लाजमी आने चाहिए। लाइफ अगर चेंज होती रहे ना, मतलब कि पॉजिटिव वे में चेंज होती रहे तो अच्छी रहती है, आप भी खुश रहते हो, आप मूड भी अच्छा रहता है, आपके इर्द गिर्द के लोग भी अच्छा फील करते हैं आपके साथ। सो लाइफ में कुछ ना कुछ नया होता रहना चाहिए। लाइफ अगर एक जैसी हो जाती है तो लाइफ जो है वो बोरिंग हो जाती है, मतलब मज़ा नहीं आता ना। आप सोचते हो यार रोज हम सुबह उठते हैं और रोज रात हो जाती है और इसी तरह सारा दिन जो है वो गुजर जाता है। सो सारे दिन में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको लगे कि यार ये मैंने डिफरेंट काम किया है सिवाय सोने के।

एनीवेज ये हमेशा की तरह प्रोग्राम में आपसे एक सवाल करेंगे, कुछ ही देर में आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में क्या आपसे पूछने जा रहा हूँ। इसके अलावा जी जैसा मैं कहता हूँ प्रोग्राम में कोई भी बात करना चाहो, जो आपकी लाइफ में कुछ हो रहा है, कुछ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, कंफ्यूज हो, सरप्राइज मिला, एक्साइटेड हो, एनीथिंग, कुछ भी जो आपके माइंड में चल रहा है, किसी सोचो में गुम हो, आप मुझे लिख के भेज सकते हो 101 एक्सप्रेस मैसेज नाम शेयर के नाम लेकर 44717 है www.facebook.com/fm101 शैल पाकिस्तान पर, और हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। हो सकता है हम आप जब आप हमारे साथ शेयर करो तो आप बेहतर महसूस करो, आपको अच्छा लगे, और हो सकता है कि अगर कुछ आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही हो तो सकता है आपको उसका सोल्यूशन भी मिल सकता है, ठीक है। और समटाइम्स अपनी खुशी को शेयर करके भी आपको अच्छा लगता है कि यार लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हुआ है, तो किसी ना किसी के साथ शेयर करना चाहिए। अगर किसी के साथ नहीं शेयर किया तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। और इसके अलावा जी हाँ, अभी हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ट्रैक जो है प्रोग्राम में प्ले करेंगे, और फर्स्ट ट्रैक मैंने आपके लिए क्यू किया हुआ है अली जफर और अली हैदर की आवाज में, ट्रैक जालिम नजरों से। सो ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा, और जैसा मैं कहता हूँ अगर आपको दिल करा चाय पीने को, कॉफी पीने को, ग्रीन टी पीने को, सो जल्दी से जाइए, अभी ट्रैक लगा हुआ है, आप अच्छी से चाय कॉफी ग्रीन टी बनाइए। और थोड़ी सी ना कड़क चाय जो इधर भी फेंक दे रहा, मैं कैच कर लूंगा, मुझे सिर्फ थोड़ी सी चाहिए होती है, वो बड़े कप मुझे नहीं पसंद। So anyways, the track को enjoy कीजिएगा, मेरा नाम हसन रजा, आपको मेरा साथ रहेगा ठीक रात के 2 बजे तक, जाना आप देखेंगे क्योंकि हम वापस आएंगे इस ट्रैक के बाद।

ओके तो लेट्स सो वेलकम बैक एट एफएम वर्मा इंटरनेशनल में. आपको सबसे पहले बता दूं कि आज के प्रोग्राम में क्या आपसे पूछने जा रहा हूं. आपने मुझे आज के प्रोग्राम में बताना है कि आपके इर्द-गिर्द कोई ऐसी बात हुई हो जिसे देख के आप हैरान हो गए हो. ठीक है, अब वो कोई पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी बात हो सकती है. सो प्रोग्राम में आपने मुझे बताना है आपके इर्द-गिर्द कोई भी ऐसी बात जिसे देख के आप हैरान हो गए हो. जिस तरह अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं अपने इर्द-गिर्द जो यंग जनरेशन है आजकल की, उनके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी देखता हूं. मतलब कि वो इतने इतना कुछ करना चाहते हैं. पहले एक टाइम हो करता था, जिस तरह मैं अक्सर शो में बात करता हूं कि आप जी बस कहते बस एक जॉब होनी चाहिए, काम होना चाहिए, दैट्स इट. आजकल की जनरेशन जो है वो स्किल्स के ऊपर बड़ा फोकस कर रही है. स्किल के ऊपर जो भी उनका स्किल है उसे पॉलिश कर रही है और उसको लेके आगे निकल रही है. और मैं उनको जब देखता हूँ कि यार ये लाइफ में इतनी तेजी के साथ आगे जा रहे हैं और इतना कुछ कर रहे हैं कि इससे नेक्स्ट जनरेशन जो है वो तो फिर पता नहीं क्या बुला होगी. तो मैं उनको देख के बड़ा हैरान होता हूँ.

तो आप मुझे बताओ कि ऐसी क्या बात है जिसको आप देख के हैरान हो गए हो या हो जाते हो? सो आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करोगे 101 एक्सप्रेस मैसेज नाम शेयर के नाम लिखकर 4471 पर, साथ www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर। अच्छा, मैं एक और बात को देख कर बड़ा हैरान होता हूँ और मुझे खुशी भी होती है उस बात पे कि आजकल की, मतलब कि हमारे जो बड़े हैं, ठीक है, मतलब जो 50s में हैं, 60s में हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे, मतलब सोशल मीडिया अकाउंट में मेरे साथ हैं और कुछ कोई वेल नोन लोग भी हैं जिन्हें लोग जानते भी हैं। मैं उनकी फ़िटनेस को देख के, मतलब इस एज में 50s 60s में 65 में, मैं बड़ा हैरान होता हूँ और मुझे खुशी होती है कि यार ये लोग आजकल मतलब इतना कंपटीशन है अपने आप को फिट रखने का कि आप, मतलब कि आप इतनी ज़्यादा एज में भी आप जो है वो यंग दिखते हो और पता भी नहीं चलता कि मतलब आपकी एज क्या है। वैसे लोगों को पता होता है लेकिन आप अपनी उम्र से कम दिखते हो, तो ये भी एक मतलब बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, अच्छा लगता है सारा कुछ देख के। मतलब कि जो लोग अपनी फिटनेस के ऊपर बड़ा ध्यान देते हैं, मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ यार, ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा जिसको आप अपने ऊपर जो है वो खर्च ना कर सको, मतलब कि चाहे वो फिटनेस के हवाले से हो या अपनी लुक्स को बेहतर करने के हवाले से हो। सो बिल्कुल अपने ऊपर पैसा लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, कुछ हद तक ये बात सही है लेकिन पैसे से खुशी जो है वो खरीदी जा सकती है। अभी किसी ने मुझे जो है वो एक पोस्ट शेयर की, एक ग्रुप में शेयर की, वो हम कज़न्स और बहन भाई हैं, उसमें वैसे ही हंसी मजाक में लिखा हुआ था, लोग इकट्ठे मत कीजिए ये बदल जाते हैं, नोट इकट्ठे कीजिए नए पुराने सब चल जाते हैं। सो ये है कि वाकई यार आजकल का दौर है, आजकल 2026 में लोग तो ऐसे बदलते हैं और लोग भी बदलते हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ भी बदलती हैं और उनका अंदाज़ भी बदलता है, उनके ख्यालात भी बदलते हैं और उनके साथ जिन्होंने आगे ज़िंदगी में चलना होता है वो भी बदल जाते हैं। तो आजकल लोग बड़ी जल्दी से बदल जाते हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ हद तक ये बात सही है कि आप पैसे से खुशी नहीं खरीद सकते, लेकिन बहुत सारी अगर आप जगहों पर देखो तो आप पैसे से खुशी खरीद सकते हो। लाइक वो एक कहावत है ना कि मतलब कि लैम्बोर्गिनी में बैठ के रोना ज़्यादा अच्छा है बजाय इसके कि आप जो है वो आपकी जेब खाली और आप रो रहे हो। तो फिर मैं ये पोस्ट देखने के बाद एक और बात सोच रहा था कि ये बात भी सही है कि देखो अगर आपका दिल टूटा हो, आप थके हारे हो और लोगों के रवैयों से और या कोई भी वजह हो सकती है, तो अगर आपकी जेब खाली है तो ऑब्वियसली आप एक कमरे में बंद रहोगे और सोचोगे उन चीज़ों के बारे में। अगर आपकी जेब में पैसे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि इलीगल तरीके से, लीगली तरीके से आपने अर्न किए, सो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, आप ट्रैवलिंग भी कर सकते हो, घूम भी सकते हो, आप बाहर होटलिंग भी कर सकते हो। सो मतलब कि आप कहीं ना कहीं अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए बहुत कुछ जो है वो आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है मेहनत करना। और जिस तरह मैं स्किल्स की बात कर रहा हूँ ना, आजकल स्किल्स से लोग बड़े पैसे अर्न कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एज का बैठे रहो और आपको कहो यार बस पैसों की बारिश होती रही, ऐसा नहीं होता। आपको कुछ ना कुछ जिंदगी में करना पड़ता है, आगे स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, रिस्क लेना पड़ता है, फिर जाकर आप जो है कहीं ना किसी मुकाम पे पहुंचते हो। और समटाइम्स ऐसा होता है कि आप बड़ी एफर्ट कर रहे होते हो लेकिन आपको रिजल्ट जो है वो कुछ टाइम बाद मिलता है, उसके लिए आपको बहुत वेट करना पड़ता है।

अब जिस तरह भी पिछले दिनों एलन मस्क हैं, उनकी मैं एक ट्वीट देख रहा था, उन्होंने एक्स के ऊपर ट्वीट किया कि जिन्होंने भी ये बात कही है कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, उन्होंने कुछ ना कुछ सोच के ये बात जो है वो कही होगी, और उसके साथ उन्होंने सैड इमोजी जो है वो लगाया हुआ था। तो लोगों ने अपने अपने मतलब कमेंट्स नीचे लिखे हुए थे, जिसमें पहला कमेंट मैं पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि आप मुझे $1 million दे दें फिर मेरी खुशियाँ जो है वो देखें कहाँ पर जाती है। अब किसी को ये बात नहीं पता कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात जो है वो कही थी, लेकिन उन्होंने लिखा। खैर जी, आपसे मैंने पूछा, मुझे बताओ कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी बात हुई हो या आपने कुछ ऐसा देखा हो जिससे आप हैरान हो गए हो। सो आप हमारे साथ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हो 101 एक्सप्रेस मैसेज नाम शेयर के नाम लेकर 4471 पर, साथ www.facebook.com/fm101 पाकिस्तान पर भी आपके मैसेज जो है हमारे पास आ रहे हैं।

Alright, जी हमारे साथ पार्टिसिपेट किया माही ने इस्लामाबाद से. आपने कहा कि फर्स्ट टाइम आप सुन रही हो और आपने बोला थोड़ी चाय इधर भी फेंक देना. मैंने फेंकी तो अब बेड पे डुल गई है और हुन करो आप ही साफ. और अच्छा नहीं, वो तो मैंने वैसे कहा था अगर आपने बाकी फेंक दिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, फिर तो आपकी चाय भी वो सारी ज़ाया होगी ना. सो खैर जी, चाय पीने के लिए होती है, फेंकने के लिए नहीं होती. वो तो देखो मैं कैच कर सकता हूँ ना, आप तो कैच नहीं कर सकते ना. या मैं कोई हो सकता है कप आगे कर दूँ उसके अंदर आगे गिर जाए, क्योंकि मुझे तो पसंद है ना चाय. अच्छा जी, इसके अलावा माज ने एक हमें मैसेज किया. माज, मैं जस्ट आपको उसका जवाब मैं दे देता हूँ. जो आपने लिखा है ना, मैं भी कुछ वैसे ही सोच रहा हूँ. So don't worry.

अच्छा वैसे अभी मेरे सामने स्क्रीन लगी हुई है, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज जो है वो टेस्ट मैच जो है वो जारी है, और क्योंकि मेरे मुझे नज़र आ रहा है सारा, तो इसलिए थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं कि वेस्ट इंडीज जो है पहली इनिंग में 344 कर चुका है, और ये है कि पाकिस्तान पहली इनिंग में 148 पे दो जो हैं पाकिस्तान के आउट हैं, और अभी अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम जो है वो खेल रहे हैं। सो लेट्स सी, बैटिंग जारी है अभी, सेशन थ्री जो है वो हो रहा है, 196 रन जो है स्टिल शॉर्ट हैं, तो लेट्स सी अभी आगे मैच में क्या होता है। मैंने कहा थोड़ा आपको बता दूं, एनीवेज जी आपके मैसेज का मैं इंतजार कर रहा हूँ, 101 एक्सप्रेस मैसेज नाम शेयर के नाम लेकर 4471 पर, साथ www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर, और मुझे बताओ कि ऐसी ऐसा क्या आपने देखा हो कि जिसे देख के आप हैरान हो गए हो, और वो हमारे साथ आप शेयर करो आपके मैसेज, और मैसेज का मैं इंतजार करूँ 12:40 के बाद आपकी लाइव कॉल्स भी मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा। अभी मुझे ट्रैक प्ले करना है, और नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए मैंने क्यों किया हुआ है नबील शौकत की आवाज़ में, सो ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा जो दोस्त इस टाइम ड्राइव करें, स्पेशली बोरेवे हाईवे पे, आपसे हमेशा की रही की बात कहना चाहेंगे, प्लीज ड्राइव केयरफुली एंड सेफली एंड कीप लिसनिंग।

Alright, listen up, welcome back to FM 101 International में. और जी हाँ, मैं रिपीट करता हूँ आपसे, मैंने कहा कि कुछ आपने ऐसा देखो जो ऑब्जर्व आपने किया हो, जिसे देख के आप हैरान हो जाते हो, सो वो हमारे साथ शेयर करो 101 एक्सप्रेस मैसेज नाम शेयर के नाम लेकर 4471 पे या www.facebook.com/FM101ChannelPakistan पर. और अच्छा, आपके मैसेज का मैं इंतजार करूँ. मैं पिछले दिनों में एक मैं वीडियो देख रहा था, क्योंकि आजकल देखो मोबाइल का दौर है और सीसीटीवी का दौर है, हर जगह वीडियोस जो है वो आपके सामने आती हैं. एक मैं वीडियो देख रहा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ. आजकल लोगों के टेम्परमेंट को क्या हो गया यार, हर कोई जो है वो बड़ा एग्रेसिव मोड में नहीं चला गया. और अगर आप देखो अपने इर्द गिर्द जो है, मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक खाने पीने की जगह की, तो वहाँ पर कुछ दोस्त वगैरह जाते हैं, मे भी शायद आपने भी ये वीडियो देखी हो, तो वहाँ पर समोसे जो हैं वो खा रहे थे. और देखिए, जब आप किसी रेस्टोरेंट या कैफ़े में जाते हो, आप बाहर से खाना नहीं लेके जा सकते, ठीक है, अलाउ नहीं होता ना, पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है, अलाउ नहीं होता. तो वहाँ पर मतलब कि अगर आप एक ब्रांड है, वहाँ पर जाकर अगर बाहर से खाना लेके जाओगे तो वो जारी बात है, वो अच्छा नहीं लगता. सो वहाँ पर जो मैनेजर थे और सीनियर वेटर थे, उन्होंने जाकर उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कि आप मतलब कि जाओ जल्दी खा लें, या तो आप यहाँ पर नहीं खा सकते. लेकिन जो लोग वहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया. और एक बार नहीं, दो बार मारा, दो बार नहीं, तीन बार मारा, फिर बहुत ज़्यादा मारा. सो जिनको मार पड़ी, उन्होंने ये वीडियो भी बाद में बनाई, अभी ये मतलब FIR भी हो गई है जिन साहब ने ये किया. लेकिन कहने का मकसद यह है कि यार, हमारे टेम्परामेंट को क्या हो गया यार. हमें अगर कोई प्यार से बात बता रहा है और एक रिस्पेक्टफुल वे में अगर बात बता रहा है कि आप मतलब गलत कर रहे हैं या आप ऐसा नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल से आपको बात सुननी चाहिए. लेकिन हमें बात सुनने की मतलब ताकत भी ख़त्म हो गई है, और हम किसी की बात जो है वो सुनते भी नहीं हैं और हम रिएक्ट कर देते हैं. हो सकता है उसमें कोई आपकी बेहतरी की बात हो, लेकिन हमारा जो टेम्परामेंट है, हमारा जो पेशेंस लेवल है, वो बहुत ज़्यादा कम हो गया. और इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिलती हैं, कि छोटी छोटी बात के ऊपर जो है वो बहस हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, और उसके बाद बात जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है. तो मतलब मुझे नहीं समझ आता कि यार क्यों ऐसा हो रहा है, क्या फ्रस्ट्रेशन है, और फ्रस्ट्रेशन जो है वो लोगों के ऊपर इस तरह क्यों निकाली जाती है. होना ऐसा नहीं चाहिए, दैट्स टोटली रॉन्ग. और कूल रहा करो यार, ज़िंदगी में बड़े मसले हैं. आप जिन लोगों से मिल रहे होते हो ना अपने इर्द गिर्द जो है, उनमें से हर कोई किसी ना किसी मसले से गुजर रहा होता है. कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग दिखाते हैं, कुछ लोग छुपाते हैं. तो वो डिपेंड करता है हर बंदे के ऊपर कि यार वो क्या करना चाहता है. सो लेकिन हर एक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ जो है वो चल रहा होता है. तो लाजमी नहीं है कि आप अपने अंदर का गुस्सा जो है उसे किसी और के ऊपर बाहर निकालो, अच्छा नहीं लगता ना. और एक एज गुजर जाती है, तो आप जब मैच्योरिटी की तरफ जा रहे होते हो, उस टाइम तो बिल्कुल भी ये चीज़ें जो है वो आप पे सूट नहीं करती हैं.

पर्सन को लेके घूमते रहते हैं और वो किसी ना किसी इंसान के ऊपर वो सारी जो है वो निकाल देते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. पॉजिटिव चीज़ों में, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में आपको इंडल्ज होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए यार कि बेदुखी बात हो वैसे किसी आजकल के दौर में नहीं करनी चाहिए. इग्नोर करो. अगर कोई कह रहा है कि यार हाथी उड़ता है आपको यार, हाँ यार वो देखो हाथी जो है वो उड़ रहा है, सो जस्ट इग्नोर करो यार. जो कहता है जो बोलता है उसे बोलने दो.

Anyways, ये आपके मैसेज मेरे पास आ रहे हैं 101 एक्सप्रेस मैसेज नाम शेयर के नाम लेकर 4471 पर www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर. आप मुझे बता रहे हो कि कुछ आपने ऐसा देखा हो जिससे देख के आप हैरान होते हो, सो वो हमारे साथ शेयर करो. और उमर हमारे साथ लाहौर से पार्टिसिपेट करें. आप तो कहें कि मैं आजकल के लोगों में अदम बर्दाश्त देख कर बहुत हैरान होता हूँ. जैसे कि आज एक शख्स ट्रैफिक जैम में दो खवातीन के हमरा रोड क्रॉस कर रहा था और एक बाइक वाले ने बेसब्री का मुजाहरा करते बाइक आगे की जो उस शख्स से टकराने लगी थी उस पर वो बंदा अपने साथ फैमिली के होने के एहसास को भी भुलाकर बाइक वाले को अब्यूज़ करने लगा. मैं लोगों के इस रवैये को देखकर बहुत हैरान हूँ इस पर कि कोई स्लाइड रोड. अच्छा वही बात है, मैंने इससे रिलेटेड अभी थोड़े पहले बात की कि पेशेंस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया. अब देखो लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं और ऊपर से हर कोई जल्दी में, हर कोई कहता है यार मैं पहले चला जाऊं, हालांकि जस्ट एक दो सेकंड लगते हैं ना कि अगर कोई पहले अगर आगे चला भी गया है तो यार जाने दो यार, कोई बात नहीं है. और ठीक है जब जवानी का जोश होता है तो फिर बंदा कहता है कि नहीं यार क्यों आगे जाए, होना ऐसा नहीं चाहिए. ठीक है बुरा लगता है हर एक को, लेकिन छोड़ दो यार, दो तीन सेकेंड लगते हैं, अगला अगर जाना चाह रहा हूँ उसे जाने दो, बजाय इसके कि बहस करो, बहस में टाइम वेस्ट करो और किसी प्रॉब्लम में पड़ो और वो बात आगे बढ़े, तो उसे बेहतर होता है कि यार इग्नोर कर दो. ठीक है, इग्नोर करना सबसे बेहतर है. और जो लोग इग्नोर नहीं करते आगे से रिएक्ट करते हैं तो वो फिर आगे जाहिर बात है फिर प्रॉब्लम होता है. देखो लोगों के पास बड़ा टाइम है, लोगों के पास बहुत टाइम है बहस करने का भी, लोगों के पास बहुत टाइम है लोगों के लिए मुफ्त की प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का भी. सो लेकिन देखो आपने अपने बारे में सोचना कि आपके पास टाइम नहीं है. आप वो टाइम अगर वहाँ पर ज़ाया कर दोगे तो उसके अगेंस्ट जो है आप ज़िंदगी में और बहुत कुछ कर सकते हो, अपना अपने दिन जो है वो अच्छे तरीके से गुजार सकते हो, बजाय इसके कि किसी की प्रॉब्लम क्रिएट की हुई हो और उसमें आप बीच में पड़ जाओ तो वो फिर आपके लिए वैसे ही मसला है ना. तो इट्स बेटर कि इग्नोर करो यार. मैं खुद बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि देखो प्रॉब्लम जो है ना वो हम में है. ठीक है, प्रॉब्लम हम सब में है. ठीक है, हम आप अगर ट्रैफिक की बात कर रहे हो ना तो मैं इसके ऊपर बहुत बात कर चुका हूँ. हम खुद गलत जो है वो गलत ड्राइव करते हैं, गलत बाइक चलाते हैं और फिर हम कहते हैं कि यार प्रॉब्लम जो है वो खड़े हो रहे हैं. देखो अगर मैं भी घर जाऊँगा ना, मुझे घर जाते हुए कुछ 10 बाइक मिलेंगे जो रॉन्ग वे पे आ रहे होंगे. मैं लिटरली ये बात कह रहा हूँ. अगर मैं उनके आगे गाड़ी खड़ी कर दूँ और मैं उनसे बहस करना शुरू कर दूँ कि नहीं यार आप गलत क्यों आ रहे हो, तो जाहिर बात है मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, शायद वो कोई और बात आगे से बढ़ जाए. तो इट्स बेटर कि यार इग्नोर करो. अगर कोई गलत कर रहा है मैं क्या कर सकता हूँ, और मेरे कहने से तो वो ठीक नहीं हो जाएंगे ना. सो इट्स बेटर कि इग्नोर करें, अपनी लाइफ चल करें, अपनी लाइफ गुजारें. अच्छा अच्छा ये लिखा हुआ अमरिया खान सियालकोट से, और आपने कहा कि और अच्छा मुझे समझ आई है कि मुझे एक अमीर बिजनेसमैन लड़के का रिश्ता आया था भी है और मैं उससे इनकार किया है. और अच्छा ठीक है, लेकिन मतलब कि इस बात से क्या वो आपके इर्द गिर्द वाले लोग जो है वो हैरान हो गए या आप खुद हैरान हो गए कि आपने इनकार जो है किया है.

लड़के का रिश्ता है, आपने उसको इनकार कर दिया. यार मैं सोचता हूँ आजकल, देखो अब वो इर्द गिर्द की बात हो रही है ना कि किन चीज़ों को देख के आप हैरान होते हो, तो मैं देखता हूँ कि यार आजकल एक तो ड्रामों में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, डिवोर्स रेशो बहुत ज़्यादा हाई है, और लोगों की जिंदगियाँ देखो ना, तो उसमें भी आपको कुछ हद तक वही चीज़ें देखने को मिल रही हैं. और बात फिर वहीं पे आती है, पेशेंस लेवल, हस्बैंड और वाइफ में पेशेंस लेवल जो है वो बहुत कम हो गया, एक दूसरे को बर्दाश्त जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, और एक दूसरे की बात जो है वो सुनते नहीं हैं. अगर आप एक बंदा बोल रहा हो और अगर आप उसे बोलने दो और उसकी बात ख़त्म होने दो फिर बोलो, अपनी बात कर लो, तो बहुत सारी बातें जो है वो सॉर्टेड हो जाती हैं. और छोटी छोटी बातें अगर आप एक दूसरे की मान लो ना, तो फिर भी काफ़ी मसले मसाइल जो है हल हो जाते हैं. लेकिन अगर इंसान अगर ज़िद पे आ जाए, अगर उसने कोई काम नहीं करना, तो फिर मसले मसाइल जो है वो खड़े हो जाते हैं. फिर वही बात है, पेशेंस और कंप्रोमाइज़ करना जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गए, जिसकी वजह से आपको हमारी सोसाइटी में बहुत सारे आपको ब्रेकअप होते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो अच्छी चीज़ नहीं है, जो नहीं होना चाहिए. और जहाँ पर आपने अभी बात की रिश्ते की, तो देखो चाहे लड़का अमीर हो चाहे लड़की अमीर हो, ये एक अलग चीज़ है, ठीक है. वो कहते हैं ना कि आपकी मेंटेलिटी मिलनी चाहिए, आपकी सोच जो है वो मिलनी चाहिए, और दूसरे एक जिन्होंने ज़िंदगी जो है वो साथ गुजारनी होती है. लेकिन आजकल एक्सपेक्टेशंस बहुत हो गई हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस बहुत हो गई हैं, फिर कंप्रोमाइज़ बहुत हो गए हैं, फिर इस तरह के बहुत सारे मामला जो है आ गए हैं. और कुछ हद तक जिस तरह पैसे की बात अभी हम कर रहे थे, पैसा भी बीच में आ गया, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे हमारी सोसाइटी में जी सुनने को मिलता है कि जी ये ब्रेकअप हो गए हैं और इस तरह की चीज़ें जो हैं. खैर क्या कर सकते हैं, आप जो है वो है. आबिद अली मैं जैसा मतदान से पार्टिसिपेट करिए, आपने कहा ट्रैफिक कंट्रोल के लिए पुरानी ट्रांसपोर्ट पर इस्लामाबाद में पाबंदी लगनी चाहिए. और अच्छा, लेकिन ये सवाल नहीं है जो मैंने आपसे कहा है.

एनीवेज ये आप पार्टिसिपेट करें 101 स्पेस मैसेज दाम शेख के नाम लेकर 4471 पर साथ www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर और फेसबुक पर अभी तक मेरे पास कोई जो मैंने सवाल किया उसके हवाले से कोई फीडबैक नहीं आया. अच्छा जी, अभी हम प्रोग्राम में एक ट्रैक प्ले करेंगे, उसके बाद फिर आपके लाइव कॉल्स भी साथ साथ हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे. 051-111-101 and 051-920-2540. आप 051-920-2540 पहले डायल किया करें, 111-111 बाद में डायल किया करें, ठीक है. सो अभी मैं प्रोग्राम में ट्रैक प्ले कर रहा हूँ. नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए मैंने बिलाल सईद की आवाज में क्यों किया हुआ ट्रैक मिसअंडरस्टूड. सो एंजॉय कीजिएगा. मेरा नाम हुसैन रजा, आपका मेरा साथ है ठीक रात के 2 बजे तक.

0: साहब, वेलकम बैक एट एफएम 101 इंटरनेशनल में. आपसे मैंने पूछा ये कि मुझे बताओ कि आपने इर्द गिर्द जो देखते हो क्या ऐसी बातें देख के जो आप हैरान हो जाते हो. सो 101 एक्सप्रेस मैसेज नाम शेयर के नाम लेकर 4471 और साथ www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर आप पार्टिसिपेट करें और आप लाइव कॉल्स में आप शामिल हो सकते हो 0519202540 और 0511111 पे आप डायल करके. सो साथ साथ आपकी कॉल्स को हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे. सो देखते हैं हमारे साथ कौन है, कहाँ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक. कौन कहाँ से बात कर रहे हैं.
1: मैं अहमद बात कर रहा हूँ.
0: अहमद फ्रॉम रबात से.
1: जी जी बिल्कुल
0: जी. अहमद क्या कहना चाहोगे आप.
1: अल्हम्दुलिल्लाह. आपने सवाल किया था कि आप क्या चीज देख के हैरान हो जाते हैं. उसके बारे में ये है कि वैसे तो इंसान बहुत हैरान रह जाता है, लेकिन आजकल जो सोशल मीडिया मतलब टिकटॉक वो देख के मतलब इस किस्म की वीडियोज आ रही होती है कि बंदा देख के हैरान रह जाता है. मतलब ये है कि भाई एक किस्म की बिल्कुल बेहयाई है. जहर सी बात है. वो देखता है और बंदा हैरान रह जाता है कि भाई यार हम किस साइड पे जा रहे हैं, हम किस चीज की तरफ जा रहे हैं.
0: अच्छा.
1: हाँ जी. और इंसान बिल्कुल भी एक दीन से तो बिल्कुल ही दूर हो गया. जहरी बात है. मोबाइल पे बंदा लगा रहता है और टाइम पता ही नहीं चलता.
0: हाँ मोबाइल फोन यूज करते तो आपको टाइम का पता नहीं चलता. अच्छा अहमद मुझे बताओ, आपको ऐसा नहीं लगता कि हम जिस तरह की वीडियोस दो तीन वीडियोस देखते हैं आपके, उसी तरह की वीडियोस जो है वो आनी शुरू हो जाती हैं.
1: बिल्कुल ये तो है. जैसे भी जो भी आप वीडियो देखेंगे, कोई भी वीडियो अगर आ जाएगी अगर उसको आप थोड़े से देख लेंगे तो इस तरह की वीडियो आएंगी.
0: तो ये हमारे हाथ में नहीं, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हम किस तरह की वीडियोस जो है
1: हमारे हाथ में. ये नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ है 50% है और 50% नहीं है. 50% इस तरह भैया, जब आप मोबाइल यूज कर रहे हैं आप वीडियोज ऊपर कर रहे हैं और उसमें एक वीडियो आ भी जाती है. लेकिन अब ये भी तो है ना कि जो वीडियो बना रहा है आया उसको भी तो सोचना चाहिए यार हम इस तरह की वीडियो ना बनाए. जाहिर सी बात है हर मतलब एक चीज होती है ना, अगर उनके अपने रिलेटिव देखें उस तरह की वीडियो तो क्या वो नहीं आया मना करते होंगे उनको.
0: चलो ये एक अलग अलग अलग बात है. देखिए दुनिया में अच्छे अच्छे बुरे दोनों दोनों साइड्स होती हैं. तो हम ना देखें, अगर हमें नहीं अच्छी लगती तो हम उस चीज को ना देखें.
1: बिल्कुल. और अगर हैरानगी दूसरी बात ये है कि आपने नेट पैकेज करवाया भी हो और अचानक से खत्म हो जाए उसके अंदर ना हैरान रह जाता
0: है. अच्छा आपको याद ना हो कि उसे आपने रिचार्ज कराना है.
1: हाँ याद ना हो रिचार्ज कराना है तो उस टाइम भी हैरान भी होता है और बंदे को अफसोस भी होता है. जब आपका सारा काम नेट पे चल रहा हो.
0: ठीक है. नहीं देखिए क्या क्या काम आपके नेट पे चल रहे होते हैं, इंटरनेट पे. आप कह रहे हो ना सारे काम आपके नेट पे चल रहे हो. मैंने कहा क्या काम आपके सारे इंटरनेट पे चल रहे हो. आपने कहा है ना, तो क्या कोई काम करते हैं आप ऑनलाइन.
1: जी ऑनलाइन काम करते हैं अमेज़न पे.
0: ओके. तो कैसा आपका एक्सपीरियंस है अमेज़न पे.
1: अमेज़न पे तकरीबन 5 ईयर्स हो गए काम करते
0: हैं. तो अच्छा अच्छा फीडबैक है आपका, अच्छा रिस्पॉन्स है. चले अच्छी बात है, गुड हो गया. थैंक यू अहमद प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए. अल्लाह हाफिज. और जी अहमद थे हमारे साथ. और यार सोशल मीडिया को हम एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, ज्यादा मैंने जो देखा है ना हम उसे बहुत ज्यादा कंट्रोल कर नहीं सकते हैं. और वही बात है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं हम क्या देखना चाहते हैं और क्या नहीं देखना चाहते. सो देखो अब हर किसी इंसान को तो हम ठीक कर नहीं सकते, ठीक है. हम किसी के पीछे तो जा नहीं सकते कि यार इस तरह का कंटेंट जो है वो ना बनाओ. हाँ हम उसे देखना जो है वो छोड़ सकते हैं और उस चीज़ में हम थोड़ा बहुत जो है वो अपना रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं. अच्छा फातिमा नूर ने हमारे साथ पार्टिसिपेट करी है. आपने कहा कि आप सरप्राइज हो रही हैं कि लोग जो है वो गलती करते हैं लेकिन मतलब अपोलोजाइज नहीं करते, उन्हें एहसास नहीं होता कि उन्होंने गलती की. बस देख लें फातिमा ऐसा ही दौर चल रहा है, लोग गलती करते हैं और वो आगे निकल जाते हैं और चाहे उनका कोई अच्छा जानने वाला हो, चाहे सलाम दुआ वाला हो, चाहे वैसे ही आप किसी से मिल रहे हो, लेकिन उनको एहसास नहीं होता कि वो गलती कर रहे हैं. और होना तो वैसे इसके ऑपोजिट चाहिए, लेकिन बस ऐसा ही है कि बस आजकल का तेज़ दौर है और तेज़ दौर में लोग जो है वो एहसास नहीं करते ना, फीलिंग्स बड़ी कम हो गई हैं. और लोग बड़े सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं और वो अपने बारे में सोचते हैं, वो दूसरों का सोचते नहीं है।

Alright जी, इसके अलावा हमारे साथ आबिद अली मर्दान से पार्टिसिपेट कर रहे हैं. आपने कहा कि अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है यार. आबिद ये वो प्रोग्राम का फॉर्मेट नहीं है ना जो आप बात कर रहे हो, तो इसलिए इसके ऊपर मैं क्या बात कर सकता हूँ यार. ये तो एक मतलब एक डिफरेंट ही चीज़ है जो इसके ऊपर आप बात कर रहे हो. तो इसके ऊपर ये है कि वैसे अगर हम साथ बैठे हो ना, इसके ऊपर हम बड़ी डिबेट कर सकते हैं, लेकिन मेरे नहीं ख्याल से यार इन चीज़ों के ऊपर हम ऑनलाइन बात करें. और ऑनलाइन जो है इसको मैं प्रोग्राम में शामिल भी करूं, इसलिए मैं आप मैसेज जो है वो पढ़ नहीं रहा हूं.

अच्छा अभी पिछले दिनों अभी हैरान होने की बात हो रही है, मैं सोशल मीडिया पे एक न्यूज देख रहा था, अभी दो तीन दिन पहले की बात है, अर्शद नदीम जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए राउंड के लिए। सो मैं देख रहा था कि यार इतने लोगों ने अपने अपने स्टेटस लिखे हुए और मतलब डिफरेंट अपने व्यूज दिए हुए कि अर्शद नदीम जो इस वजह से क्वालिफाई नहीं कर सके, इस वजह से क्वालिफाई नहीं कर सके, उनको फेम मिल गया, उनको पैसा मिल गया है तो आप वो भूल गए हैं, थ्रो कैसे करते हैं, और पता नहीं क्या क्या बातें जो हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, उन्होंने ये भी लिखा कि यार इंसान है, कभी इंसान का एक बुरा दिन भी होता है, तो शायद वो अर्शद नदीम का बुरा दिन था, बुरा टाइम था, सो उनसे नहीं हो पाया। और किसी एक एक परफॉर्मेंस की वजह से आप किसी को जज तो नहीं कर लेते ना, लेकिन आजकल हम जज बहुत जल्दी करते हैं, लोगों को एक सेकंड लगाते हैं और जज करके हम बस पोस्टमार्टम कर देते हैं अगले का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत क्विक रिएक्शंस जो है हमें नहीं देने चाहिए और सिर्फ कीबोर्ड वॉरियर नहीं बनना चाहिए। ठीक है अपने व्यूज़ देने चाहिए, लेकिन हर टाइम नेगेटिव नहीं होना चाहिए हर किसी के बारे में। तो ये कि हो सकता है आज उनका बुरा दिन हो, अभी एक एक ही तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बुरी गई है, हो सकता है अगली 10 परफॉर्मेंस उनकी वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग हो जाए, तो फिर क्या आप करोगे। सो एनीवे सी कॉलर देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहां से? कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है और आज मेरे लाइन में प्रॉब्लम लग रहा है, और तरह कोई बात नहीं। 0519202540 0511111 पर अभी कॉल्स मेरे पास आ रही हैं और उनको हम टाइम टू टाइम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। एनीवेज जी आप साथ एसएमएस सेंड कर रहे हो 101 स्पेस मैसेज नाम शेयर के नाम लेकर 4471 पर, साथ www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर। अभी मुझे एक ट्रैक प्ले करने है और नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए मैंने क्यों किया हुआ है, थोड़ा पुराना ट्रैक जो है शामिल करते हैं प्रोग्राम में हारून की आवाज में। सो ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा। मेरा नाम हसनैन रजा, हम वापस आएंगे इस ट्रैक के बाद।

0: ऑलराइट ऑल लिसनर्स, वेलकम बैक एट एफएम वर्मा इंटरनेशनल में। और जिन लिसनर्स से अभी भी ट्यून इन किए हैं, आपको बता चले आज के प्रोग्राम में पूछा है मैंने ये कि मुझे बताओ कि अपने इर्द गिर्द आप क्या देखते हो जिसे आप देखे हैरान रह जाते हो। और आप 101 एक्सप्रेस मैसेज नाम शेयर के नाम लेकर 4471 पर साथ है www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर, और लाइव कॉल आपकी हम शामिल करें 051111111 एंड 051920240 पर। सो कॉल देखते हैं हमारे पास किसकी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। All right, जी दो कॉल सीन दोनों जो हैं वो ड्रॉप हो गई, थर्ड देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
1: सोनिया बात कर रही
0: हूं। जी सोनिया कैसी हो आप, ठीक ठाक हो? कॉल सारी ड्रॉप हो रही हैं और मैं काफी देर से कोशिश कर रहा हूँ कॉल जो है वो शामिल की जाए, लेकिन ये है कि चले अभी आप कॉल्स करते रहो, अभी मैं कोशिश करता हूँ दोबारा से कॉल्स को शामिल किया जाए।

अच्छा अभी पिछले दिनों मैं एक अपने दोस्त से मिला और वैसे तो सलाम दुआ होती रहती है लेकिन डिटेल्ड मीटिंग जो है ना, हम किसी से मिलने जा रहे थे तो हमारे पास 2-3 घंटे थे, तो हम आपस में हमारी बहुत गपशप लगी बहुत ज़्यादा, और मैं उन्हें तकरीबन मेरे ख्याल से 25 ईयर्स से जानता हूँ। तो खैर जब आप किसी के साथ बैठते हो, उनके साथ गपशप लगाते हो, तो फिर पता चलता है कि मतलब उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। सो खैर अभी जिस तरह मेरी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था ना कि हर एक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ जो है वो मसले मसाइल चल रहे होते हैं, तो जब उन्होंने मेरे साथ शेयर किया, वो बड़ी अच्छी जॉब कर रहे हैं, बड़ी अच्छी पोजिशन पर हैं, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। और मैं इसलिए हैरान हुआ, मैंने कहा कि यार इनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम हो सकती है, कभी मतलब नज़र तो नहीं आई जिस, और जैसे वो लोगों से मिलते हैं तो उन्होंने तो कभी किसी को शो ही नहीं किया कि यार उनकी लाइफ में कोई अप एंड डाउन जो है वो हो, कोई मसला मसाइल जो है वो आ सकते हैं। तो कुछ लोग जो है ना चीज़ों को वो छुपाते बहुत अच्छा है और कभी किसी को महसूस नहीं होने देते कि हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अच्छा उन्होंने मेरे साथ एक बात शेयर की, चले मैं आपको मैं बताता हूँ, शायद वो कुछ लोगों को वो समझ आ जाए। अच्छा उन्होंने मेरे से एक बात की, यार मैं एक टाइम मेरे पे आया कुछ साल पहले जो है वो मैं फाइनेंशली जो है ना बड़ा टफ लाइफ गुजार रहा था और जॉब भी अच्छी थी सब कुछ था, लेकिन मैंने जो सारी चीज़ें अपनी ली हुई थी ना घर में भी और इंक्लूडिंग गाड़ी और दिस एंड दैट सारा कुछ जो है वो मैंने आप कह लो कि इंटरेस्ट पर ली हुई थी, मतलब सूद पे ली हुई थी और उसके मैं पैसे ज़्यादा वो मैं पे भी कर रहा था इंस्टॉलमेंट्स में। तो कहते हैं कि मुझे एक दिन फील हुआ कि यार ज़िंदगी में इतनी तंगी क्यों आ रही है, तो उन्होंने खुद ये बात जो है रियलाइज़ की, तो उन्होंने देखा कि यार मैं ये 4-5 चीज़ें मेरे पास हैं और जिस पे मैं इंटरेस्ट जो है वो पे कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि यार मैं किसी तरह इन चीज़ों को इस चीज़ को मैं ख़त्म करता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने इस तरह गाड़ी भी बेच दी, मैंने जो कुछ भी उनके पास था जो उन्होंने इस तरह कैसे इंस्टॉलमेंट्स पे चीज़ें जो है वो ली हुई थी जिसके ऊपर उनको वो इंटरेस्ट जो है वो पे कर रहे थे ज़्यादा, तो वो उन्होंने अपनी लाइफ से निकाल दी। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब ये हुआ ना तो उसके बाद मेरी लाइफ जो है ना ऐसी चेंज हुई और ऐसी मैं फाइनेंशली जो है वो साउंड हुआ, और कहते हैं बाद में वो सारी चीज़ें मेरे पास आ गई, मैंने खुद वो ख़रीद ली, लेकिन वो जो 1.5-2 साल थे वो मेरे इतने टफ गुजरे कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि यार लाइफ में चल क्या रहा है। तो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ब्रेक्स होती हैं और जो आप कह रहे हैं स्टॉप्स लगे होते हैं। कभी आपने बैठ के ये बात सोची है कि वो स्टॉप जो है वो क्यों, क्या वजह हो सकती है उस स्टॉप की? और क्योंकि हम जब तक खुद नहीं सोचेंगे ना, जहाँ हम हमारे माइंड में जब तक वो बात आएगी नहीं कि यार ये काम जो है वो क्यों हो रहा है और इसकी क्या वजह हो सकती है, तो कुछ ना कुछ हमारे से रिलेटेड ही होता है। ऑब्वियसली हमारी लाइफ है तो हमें वो सोचता भी खुद ही है, तो हमें बहुत सारे आंसर्स जो हैं वो खुद मिल जाते हैं, और समटाइम्स कुछ लोगों को वो आंसर्स मिल रहे होते हैं लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो चीज़ बार बार जो है वो आपका ज़मीर आपको बता रहा होता है कि नहीं यार ऐसा है, और आप उसको मान नहीं रहे होते, लेकिन जिस दिन आप उसको मान लेते हो ना आपको ये चीज़ समझ आ जाती है और उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हो, तो उस दिन से आपकी ज़िंदगी जो है वो बदलना शुरू हो जाती है और जो कुछ हर्डल्स आपकी लाइफ में होते हैं वो हर्डल्स जो है वो खुद ब खुद साइड पर होना शुरू हो जाते हैं।

एनीवेज जी आप लोग कॉल्स करते रहे 051-111-101-051-920-25-40 पर, और जब आपके नंबर जो है वो मिल जाएगा तो फिर हम कॉल्स की तरफ बढ़ेंगे. लेकिन फिलहाल मुझे लाइन से प्रॉब्लम लग रहा है, कॉल्स जो हैं वो ड्रॉप हो रही हैं, सो इसलिए हम कुछ ही देर में दोबारा कॉल्स की तरफ बढ़ेंगे. अच्छा अभी एक ट्रैक प्ले करने हैं और नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए मैंने क्यों किया वो मैर जसवाल की आवाज़ में. सो मैर जसवाल को सुनते हैं और काफ़ी टाइम हो गया मैर का ट्रैक जो है वो कोई नया नहीं रिलीज हुआ है. So, enjoy कीजिएगा एंड सुनते रहिएगा FM Warma International सावा स्टूडियो से.

और भाई जिले से जापू वेलकम बैक कहते हैं FM वर्मा इंटरनेशनल में और उमर जसवाल की आवाज़ में आप ट्रैक सुन रहे थे और ये है कि आपसे मैंने पूछा मुझे बताओ कि अपने इर्द गिर्द आप क्या ऐसा देखते हो कि जिसे देख के आप हैरान रह जाते हो। अच्छा मैंने एक पोस्ट देखी थी मेरे ख्याल से आजकल में कहीं पर, उसमें मतलब अब बहुत सारी पोस्ट ऐसी होती हैं जहाँ पर मशहूर एक्टर या एक्ट्रेसेस का नाम लिख दिया जाता है। अच्छा इस पोस्ट में लिखा हुआ था कि ये ट्रेडिशन जो है वो शादी के फंक्शन में चेंज होना चाहिए कि दूल्हे का जूते जो है वो छुपा दिया जाए, और अब ऐसा होना चाहिए कि दूल्हे का मोबाइल फ़ोन जो है छुपा देना चाहिए और वो इजीली आपको 5 लाख रुपए दे देंगे 50,000 के बजाय। सो अपनी थिंकिंग को चेंज करो और इनकम को इंक्रीज करो। तो मतलब ये हमारे जो एक्टर हैं एजाज नुमान एजाज साहब जो हैं वो नीचे उनका नाम लिखा हुआ था कि उन्होंने ऐसा कहा है। तो मैं इस बात पे हैरान भी हो रहा था और वो इसलिए हैरान हो रहा था कि यार देखो आपके जहन में बातें जो हैं वो आइडियाज़ जो हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं। बात तो उन्होंने वैसे ठीक की है कि अगर मतलब कि दूल्हे के जूते छुपाने के बजाय मोबाइल फ़ोन आप छुपा दो तो मोबाइल के पीछे तो आपको पता है हर किसी की ज़रूरत है मोबाइल फ़ोन जो है, तो उसके पीछे तो बाकी 50,000 के बजाय 5 लाख भी अगला बंदा दे देगा। सो अपनी सोच को बदलो और थोड़ा दिमाग को हिलाओ कि कुछ नया कुछ ज़िंदगी में होना चाहिए।

इसलिए तो मैं भी कहता हूँ कि यार लाइफ में कुछ ना कुछ नया होना चाहिए, कुछ मतलब कि वो ट्रेडिशंस भी कुछ ऐसे लोगों ने सेट किए हुए हैं कि बस उनको लेके चलते रहते हैं और कहते हैं कि बस इसी को फॉलो करते रहना है। सो अगर थोड़ा सा हम दिमाग इस्तेमाल करें ना, तो निकलवाने तो आपने पैसे पैसे ही हैं, तो आप थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करो तो वो आप आजकल के लिहाज से अगर आप चलो तो जारी बात है फिर आप पैसे जो है वो ज़्यादा निकलवा सकते हो दूल्हे से।

अच्छा जी, हमारे साथ मैसेज किसने सेंड किया है, इसमें नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं लोगों की मुनाफ़त देख के हैरान होती हूँ। हमारे मुंह पर हमारे होते हैं और हमारे अच्छा रिश्तेदारों के मुंह पे हमारी बुराई करते हैं, ठीक है। और अच्छा, मुझे तो वैसे इस बात पे बिल्कुल हैरानगी नहीं होती, और मैं तो यूज़ टू हो गया हूँ कि लोग जो हैं ऐसे हैं तो ऐसे हैं, आप क्या कर सकते हैं। सो ये है कि लोगों की आदत होती है और लोग ऐसे करते हैं, अब क्या कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा ना शो में कि जस्ट इग्नोर करना चाहिए, छोड़ दें, ऐसे लोगों को छोड़ दें, अपनी लाइफ लाइफ गुजारें, अपनी लाइफ में बिजी रहें, अपनी लाइफ आगे लेके चलें, अपने ऊपर फोकस करें और दैट्स इट। ऐसे लोगों के बारे में सोचना ही छोड़ दें, या ऐसी बातों को सोचना ही छोड़ दें। Alright जी, प्रोग्राम में एक ट्रैक प्ले करते हैं। नेक्स्ट ट्रैक मैंने आपके लिए मुस्तफा जाहिद की आवाज में क्यू किया हुआ है, और आप इस ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा। मेरा नाम हसन है, आप सुन रहे हैं FM Moromah International। सो हम वापस आएंगे इस ट्रैक के बाद।

0: वेलकम बैक टू एफएम मोरवा इंटरनेशनल में. और आपसे मैंने पूछा जी कि मुझे बताओ कि इर्द गिर्द क्या आप देखते हो जैसे कि आप हैरान रह जाते हो. सो 101 स्पेस मैसेज नाम शेयर के नाम लेकर 447 पर आपके मैसेज मेरे पास आ रहे हैं और साथ www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर आपके मैसेज मेरे पास आ रहे हैं और साथ लाइव कॉल 051-111-101-051-920-2540 पर. सो कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है, कहां से पार्टिसिपेट कर रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कौन कहां से?
1: मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूं, मुश्तबा.
0: मुश्तबा फ्रॉम रावलपिंडी. कैसे मुश्तबा भाई, ठीक ठाक हैं आप?
1: मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूं. आप
0: जबरदस्त, क्या कहना चाहेंगे? बस आदत से मजबूर हूँ. मैं गई नहीं बाहर, गाड़ी चला रहा हूँ, साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ. चल थैंक यू, अब तो ख्याल रखिए. बस ठीक है, ठीक है, समझ आ गई मुझे. थैंक यू. और भाई जी अभी कॉल्स हमारे पास आ रही हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम.
2: मैं चकवाल से जोहरान बात कर रहा हूँ.
0: सॉरी आपका नाम क्या?
2: चकवाल से जोहरान बात कर रहा
0: हूँ. जी कैसे हो आप? ठीक ठाक हो?
2: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. आप सुनाए? ठीक है भाई जान,
0: जबरदस्त. मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. क्या कहना चाहेंगे आप?
2: सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूंगा, जो देख के बड़ी हैरानगी होती है.
0: अच्छा.
2: बड़े बड़े मतलब अमीर लोग जिसे कहते हैं कि फाइव क्लास जिसे कहते हैं, फाइव स्टैंडर्ड, तो ये लोग बड़े बड़े मॉल में जाके बार्गेनिंग करना अपनी तोहीन समझते हैं.
0: अच्छा.
2: तो छोटे छोटे सब्जी के ठेलों, फ्रूट वाली रेड़ी जहाँ पे लगी हो वहाँ पे ये लोग 50-50 पीसीस रुपए पे बहस कर रहे होते हैं. ठीक है, तो ये काइंडली नहीं करना चाहिए. तो ये चीज देख के बड़ी हैरानी होती है कि लग्जरी कारों पे आके.
0: अच्छा.
2: रेड़ी पे वो बहस कर रहे हैं 30-30, 40-40 रुपए दे के आप जो है ये महंगा दे रहे हैं. तो वही लोग बड़े बड़े मॉलों में जाके बिना प्राइस टैग देख के बार्गेनिंग करना अपनी तो नहीं समझते हैं. तो ये कांडी, ये चीज नहीं होनी चाहिए. तो इस पे थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए लोगों को. और दूसरा जो देख के हैरानी होती है कि मैं यानी कि बेसिकली खुद परदेसी बंदा हूँ.
0: अच्छा.
2: जब जाता हूँ वो 2-3 माह बाद घर, तो एक नई बिल्डिंग तैयार हुई होती है. तो ये चीज देख के बड़ी हैरानी होती है कि दौर जो है ना बड़ी तेजी से आगे निकल रहा है, तो पता ही नहीं चलता कि मतलब आप आते हो महीने बाद जब घर वापस आते हो तो कोई नई एक बिल्डिंग बनी हो, एक नई शॉप बनी होती है.
0: हाँ.
2: तो कहीं तो पूरे पूरे ट्रैक ही चेंज हुए होते हैं. दौर जो है ना बड़ी तेजी से आगे निकल रहा है, तो

0: अपने मनाएं और सबसे बड़ी बात के टाइम निकालें अपनों के लिए। आजकल के दौर में बहुत बहुत कम देखने में आ रहा है कि कोई टाइम देता है। बहन भाइयों के पास भी आपस में टाइम नहीं है बात करने का, तो टाइम निकालें। मोबाइल फोन जैसे आ गए हैं तो लोग एक दूसरे से दूर हो गए। हालांकि मोबाइल फोन का काम ही कम्युनिकेट करना था, लेकिन अब मोबाइल फोन पे भी कोई रब्ता नहीं करता है। मिलना मिलाना तो बड़ी दूर की बात है।
1: ओके।
0: तो ये काइंडली अपने जो है ना तालुकात बेहतर करें अपने घर वालों से, खास तौर पे सबसे पहले तो अपने घर वालों से करें, उसके बाद फिर दोस्त यार बाद में आते हैं। तो मैं ये मशवरा दूंगा तमाम लोगों को।
1: ठीक हो गया, चले थैंक यू।
0: आप ठीक है?
1: जबरदस्त यार, बस ठीक ठाक, अल्लाह का बड़ा करम।
0: ओके
1: ओके, अल्लाह हाफिज। और भाई जी, जहाँ तक पहली बात की कि पैसे वाले लोग जो हैं वो 20-20 30-30 रुपए 40-40 रुपए के ऊपर बहस जो है वो कर रहे होते हैं, और ऐसा देख के वैसे हैरानगी होती है। और जिनको पैसे यार अल्लाह मैंने दिया है, वो अगर कोई 500 रुपए की चीज़ ले रहे हैं किसी से, डिजर्विंग बंदे से, तो उसे 40-50 तो वैसे ही ऊपर दे देने चाहिए। मतलब बार्गेनिंग होनी चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को वहाँ पर बार्गेनिंग करनी चाहिए जहाँ पर कोई मतलब एक्सपेंसिव चीज़ ले रहे हो, तो वहाँ पर ठीक है, वहाँ पर ले रहे हो तो बात सही है आपकी। अब ऐसे लोगों से क्या बार्गेनिंग करनी कि जो डिजर्विंग लोग हैं, जिन्हें पैसे चाहिए हैं। और जहाँ तक बिल्डिंग्स की बात है यार, बिल्डिंग्स वाकई बहुत तेज़ बन रही है। एक टाइम हुआ करता था कि ये घर और बिल्डिंग्स बनाने में मतलब साल लगते थे, लेकिन अभी मतलब दो दो महीने के अंदर, तीन तीन महीने के अंदर पूरा पूरा स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा हो जाता है, और चीज़ें जो है वो बहुत तेज़ी से हो रही हैं। टाइम बहुत जल्दी गुजर रहा है और तरक्की बहुत तेज़ी से हो रही है। अभी मैं इस्लामाबाद की बात करूँ तो इस्लामाबाद में पिछले एक डेढ़ साल में दो फ्लाईओवर्स बन गए यार, तीसरा बन रहा है रावलपिंडी में देख लो। तो मतलब कि पाँच पाँच छः छः महीने में नक्शे जो हैं वो चेंज हो रहे हैं जगहों के, और बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पर आपने मतलब बड़ा टाइम जो है गुजारा हुआ है, वहाँ से आप गुजरते हो तो वो जगह पहचानी नहीं जाती कि यार वाकई ये वही जगह है जहाँ पर हमने 10-15 साल जो है गुजारे हैं।

अच्छा जी, वकास हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं कश्मीर से। आपने पहले भी मैसेज सेंड किया था, आपने कहा कि बंदा कोई राज की बात जो है वो घर नहीं बता सकता। ओके ठीक है, आप कहने का मकसद ये है कि आप अगर राज की बात बताते तो वो दूसरे को बता देते हैं घर में, यही कहना चाह रहे हो ना? तो ठीक है यार, सीक्रेट्स जो है वो वैसे ही अपनी तक रखने चाहिए। सीक्रेट्स आप बताते क्यों किसी को? जब किसी को बताओगे तो जारी बात है वो आगे 10 लोगों को बता देगा। तो इसलिए अच्छी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो अपने तक ही रखनी चाहिए। किसी अपने मतलब बहुत करीबी दोस्त को भी हर बात नहीं बतानी चाहिए ना। चलो कुछ बातें बंदा बता देता है लेकिन हर बात नहीं बतानी चाहिए। कुछ 1% चीज़ें जो अपने तक ही होनी चाहिए। तो खैर, इसमें कुछ गलती आपकी भी है, हर बात जो है वो सीक्रेट बताने वाला नहीं होता है।

चलें जी, प्रोग्राम के एंड में मैं आपको एक बात बताऊंगा और बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, और अभी मैं नहीं बता रहा, प्रोग्राम जो क्लोज कर रहा हूँगा तो उस टाइम आपको बताऊंगा। अभी मैं प्रोग्राम में ट्रैक प्ले करने जा रहा हूँ और ट्रैक मैंने आपके लिए क्यों किया हुआ है फाखर महमूद की आवाज़ में, ट्रैक दीवाना। सो एंजॉय कीजिएगा एंड कीप लिसनिंग।

0: जिक्र है तेरा। और सब वेलकम बैक एट एफएम मोरो इंटरनेशनल में, और आप मुझे बता रहे हो प्रोग्राम में कि अपने इर्द गिर्द क्या ऐसी चीज देखते हो जिससे आप हैरान हो जाते हो। और हमारे साथ आयशा बतूल ने लाहौर से पार्टिसिपेट किया, आपने कहा कि लोगों को देखकर हैरानी हुई कि उन्हें यह भी एहसास नहीं होता कि वो किस जगह बैठ के क्या किस मौके पर क्या बात कर रहे हैं। तो ठीक है, आपने अपनी आगे जो है वो बात लिख के भेजी है क्यों आपने ऐसा कहा है, लेकिन बस लोग सोचते कम है ना, कोई बात करने से पहले कुछ सेकंड अगर सोच लिया जाए कि आप कहाँ पर गए हुए हो, कहाँ पर क्या बात करनी है, तो फिर बहुत सारे मसले मसाइल जो है वो कम हो सकते हैं। लेकिन लोग सोचते नहीं है ना, कुछ कहीं पे गए हो और वहाँ पर उदासी का समा और वहाँ पर हंसने वाली बात कर देते हैं, और जहाँ पर हंसना हो वहाँ पर कुछ सीरियस बात कर देते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम सोच लेना और थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ हम दिमाग इस्तेमाल करें और देखें कहाँ पर क्या बात करनी चाहिए, तो बेहतर हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम।
1: मैं सर रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ, साजिद अली।
0: साजिद फ्रॉम रावलपिंडी, कैसे हो साजिद, ठीक ठाक हो?
1: दुआ है सर, करम है।
0: क्या कहोगे?
1: तो बात बात यही है, अल्लाह तुमको नेकी दे, हमारे को एक गाना सुनना था। ठीक है
0: यार, गाने
1: आपको कॉल इसलिए कि मेरे पास टच मोबाइल नहीं है, रेडियो सुन रहा हूँ। आज दिल ने बोला गाना सुनो, कोई अफ्ता परवीन का, तो आप चलाओ तो मेहरबानी होगी, तुम भी सुनोगे हम भी सुनेंगे।
0: अच्छा, अभी अभी मेरे प्रोग्राम में फरमाइश पूरी नहीं होती है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपका ख्याल रखना, अल्लाह
1: हाफिज़।
0: और राइट जी, फरमाइश पूरी हो नहीं सकती, तो कॉलर देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम
2: जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है
0: जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए, नाम बताइए, कौन कहाँ से बात करें?
2: बड़ी शिद्दत से इंतजार रहता है, बस भाग भाग ही बस आया था मैं जो उससे मैंने कहा चले खुदा करे कि हाजी लग जाए। कहते हैं ना, वो बस्ता रह से डर से उम्मीदें बाहर रख।
0: बिल्कुल, छोटी सी कॉल होगी आपकी, प्रोबेबली लास्ट कॉल ही है।
2: थैंक यू वेरी मच, ये मेरी मोहब्बत या आपकी मोहब्बत है, रंग लाई है। बिल्कुल, आज से 150 साल पहले मेरे बाबा जी के गालिब सत्र गालिब पा गए दुनिया में, तो कह रहे थे कि आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं भी हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। अरे अब दिन आए दिन आपके राजस्थान अटैक का दौर है, और आप भी फंसा रहे थे, ऐसी ऐसी चीजें हर समय हो रही है कि आपके गुमान में नहीं है कि क्या हमारी 100 साल बाद या 50 साल बाद दुनिया क्या होगी। तो लेकिन वो आप बस बदकिस्मती समझे कि हमारे अभी इतना या शोर या उसकी इजाजत नहीं है कि हम इन चीजों पर कुछ मियाना जिस चीजें होती है उसी पर बस खैर असर गुफ्तगु करके, तो बस मत मंदिर अक्सर यही सोचता हूँ आपके चैनल को, बस
0: बाल भाई थे हमारे साथ जर्मनी से, और अक्सर हमारे साथ रहते हैं और कुछ ना कुछ अपने दिल की बातें जो है वो करते रहते हैं। कॉल का सिलसिला जो है यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आज आपसे मैं पूछ रहा था प्रोग्राम में कि मुझे बताएं कि आप इर्द गिर्द क्या ऐसा देखते हैं जिसे देख के हैरान रह जाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो नेगेटिव वे में हो। तो आपका फीडबैक भी हम साथ साथ प्रोग्राम में शेयर कर रहे थे, कुछ अपनी बातें भी आपके साथ कह रहा था, और मैंने आपसे कहा था कि प्रोग्राम के एंड में मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट बताऊँगा, और मैं वो बात करने जा रहा हूँ जो मैं कुछ टाइम से मैं कर रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करूँगा इसके ऊपर, फिर कभी बात करेंगे। और अभी ये है कि पहले मैं ट्रैक प्ले कर दूँ, मैं लास्ट ट्रैक जो है कौन सा प्रोग्राम में प्ले करने जा रहा हूँ। लास्ट ट्रैक आपके लिए है जी कौन सा, चल दिए तुम कहाँ, और इस ट्रैक के साथ। हाँ, मैं ये बात करना चाह रहा था कि अभी अगस्त चल रहा है, आज 4th of August है, और मैं कुछ काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था कि पहले सोचा कि ब्रेक ली जाए, और लेकिन ब्रेक जो है वो आई डोंट थिंक सो कि वो सही है। मैंने ज़िंदगी में हमेशा बहुत सारे काम किए हैं, और हर काम जो कुछ भी किया है मैंने अपने बड़े दिल के साथ किया है। और जहाँ तक रेडियो की बात है, रेडियो में एक बहुत लंबा अरसा जो है, एक बड़े लंबे अरसे से रेडियो में कर रहा हूँ, और मैंने हमेशा एक बात सोची थी कि हाँ, मुझे जब कभी लगेगा कि हाँ मेरे में वो एनर्जी नहीं रही अब, तो या मेरे अंदर वो बात नहीं रहेगी, तो मैं उस टाइम ये डिसाइड करूँगा कि मुझे क्या करना है। तो मैं एक दो महीने से सोच रहा था कि मुझे क्या प्लान करना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि इस मंथ के एंड में मैं अपना लास्ट रेडियो का प्रोग्राम करूँगा, और उसके बाद फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। सो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही है कि इंशाल्लाह 25th को मैं लास्ट प्रोग्राम करूँगा और अपने रेडियो कैरियर का। और यह कि वैसे सोशल मीडिया पे आप जो सर्च कर सकते हो, जिन्होंने मुझे ज्वाइन नहीं किया हुआ, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो, स्नैपचैट हो, मेरा नाम लिखोगे आप हसनैन रज़ा HSNAN RZA हसनैन रज़ा, आप मुझे सर्च करोगे मैं आपको मिल जाऊंगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हो हमेशा की तरह, इनबॉक्स कर सकते हो। सो ये है कि ये इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैंने करनी थी। तो एनीवेज ही, अभी आप ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा, और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट मंडे नाइट को मुलाकात होगी एफएम मोरो इंटरनेशनल में। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हसनैन रज़ा साइनिंग ऑफ नाउ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।

कभी मैं कभी तुम देखिए लास्ट मेगा एपिसोड आज रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर और पाकिस्तान के तमाम लीडिंग सिनेमा घरों में।

0: से गुजर है कि जी प्रोटोकॉल।
1: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 F.

101 FM।

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 F.

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 F.

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.

और इसी तरह हमने हर बस्ती में बड़े बड़े मुजरिम पैदा किए कि उनमें मक्कारियां करते रहें, और जो मक्कारियां ये करते हैं उनका नुकसान इन्हीं को है और इससे बेखबर हैं।

और ये कि मेरा सीधा रास्ता यही है तो तुम उसी पर चलना और रास्तों पर न चलना कि उन पर चलकर अल्लाह के रास्ते से अलग हो जाओगी। इन बातों का अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है ताकि तुम परहेजगार बनो।

0: कौन।
1: लोगो, जो किताब तुम पर तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ से नाजिल हुई है उसकी पैरवी करो, और उसके सिवा और रफीकों की पैरवी न करो, और तुम कम ही नसीहत कबूल करते हो।
0: वो कम

फिर उनके आगे से और पीछे से और दाएं से और बाएं से गरज हर तरफ से आऊंगा और उनकी राह मारूंगा और तू उनमें अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा।